0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आपकी साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से ये लड़कियां आती हैं, ये भी होनहार हैं, आप भी बड़ी अच्छी अदाकारा, आप भी बड़ी होनहार अदाकारा हैं। आप जो अब कर रही हैं, उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, किसी की वेशभूषा पर बोलना, ये दिखाता है कि आपकी कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता वाली सोच है आपकी। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आप ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था और इसके खिलाफ हम खड़े थे, अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने और उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने, और इसमें अच्छी कोई बुरी बात नहीं है।
2: दैट इज नन ऑफ हर बिजनेस। पहली बात तो मैं कहूंगी कि कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने, आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सेनन ने क्या पहना क्या नहीं पहना, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस।

0: को भी इसी तरीके से बेरहमी से मारा गया था। तब बिश्नोई गैंग कल्प्रिट्स निकले थे इस पूरे हादसा के। इस बार भी उन्हीं का एक लिंक देखा जा रहा है कि कहीं उन्हीं के मेंबर्स ने ये अटैक भी प्लान किया था कि नहीं।
1: देखिए, अभी पुलिस इस तरफ जरूर जांच कर रही है कि ये जो काला राणा जो गैंग है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी है, उसकी तरफ इशारा जरूर है। यूपीएससीएफ की टीम, लोकल पुलिस को शक है क्योंकि वो बड़े गैंगस्टर्स की जो शार्प शूटर्स हैं वो उस गैंग के कनेक्शन में हैं। लेकिन ये काला राणा गैंग के अलावा भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। वजह साफ है कि अभी तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो पैटर्न रहता है कि अगर वो घटना को अंजाम देते हैं तो वो ओन भी कर लेते हैं। लेकिन करीब 12 घंटे होने को आ जाए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई ऐसा ओनरशिप नहीं आई है कि हाँ हमने ये घटना की है या उनके गैंग के द्वारा करवाई गई है। ऐसे में ये जरूर पुलिस को शक है कि जो काला राणा गैंग है उसके शूटर्स को इंडिविजुअली हायर करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
0: संतोष, एक छोटा सवाल यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी। क्या परिवार वालों को या अंकित को ऐसी कोई धमकी मिली थी ये इंसिडेंट होने, ये हादसा होने के जस्ट पहले? कोई ऐसी खबर आई है?
1: देखिए, पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत कभी अंकित या उनके परिवार वालों ने नहीं की कि उनको किसी भी तरह की कोई रैंडम कॉल मांगी गई है, रंगदारी वसूली की गई है या कोई थ्रेट कॉल आई है। ऐसी कभी कोई शिकायत लोकल पुलिस को नहीं दी गई, ना ही पुलिस ने इस बात को कह रही है कि उसको जानकारी थी या अचानक से हुई घटना है। पुलिस, यही वजह है कि लोकल पुलिस अंकित के जो जिन लोगों के साथ उठना बैठना था उनको भी खंगाल रही है, किनके साथ, कहीं कोई और रंजिश की वजह तो नहीं है। ये हाइट सुपारी किलिंग है, ये हाइट शूटर्स के द्वारा हत्याकांड किया गया। जो पैटर्न है वो जरूर एक खतरनाक और भयावह है, तो लिहाजा पुलिस को ये शक है कि इसके पीछे हायरिंग की गई है शूटर्स की। किसने की है, क्यों की है, अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आज जब लास्ट रिचुअल्स हो जाएंगे, जब अंतिम संस्कार हो जाएगा, तब परिवार वालों से बातचीत हो पाएगी। अभी परिवार वालों से भी पुलिस की बहुत बातचीत नहीं हो पा रही है। जो प्राइमरी पेसी जो इन्वेस्टिगेशन हो पा रहा है वही पुलिस में काम कर रही है।
0: हमें सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, वी विल कीप अ वेरी क्लोज ट्रैक ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस वेरी केस, बट इट्स अ शॉकिंग केस एंड हॉरिफाइंग मर्डर दैट्स टेकन प्लेस, अ चिलिंग केस दैट्स टेकन प्लेस इन ब्रॉड डे लाइट, वेयर दिस हरियाणवी रिनाउंड हरियाणवी सिंगर हिज लाइफ हैज बीन क्लेम्ड बाई दीज शूटर्स इन शामली, उत्तर प्रदेश।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: आपकी साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से ये लड़कियां आती हैं, ये भी होनहार हैं, आप भी बड़ी अच्छी अदाकार, आप भी बड़ी होनहार अदाकारा हैं, आप जो अब कर रही हैं उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, किसी की वेशभूषा पर बोलना, ये दिखाता है कि आपकी कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता वाली सोच है आपकी। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आप ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था और इसके खिलाफ हम खड़े थे, अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने और उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने, और इसमें अच्छी कोई बुरी बात नहीं है।
1: दैट इज नन ऑफ हर बिजनेस। पहली बात तो मैं कहूंगी कि कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने, आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सेनन ने क्या पहना क्या नहीं पहना, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस।

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: की में उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत वही है। हालांकि प्रधानमंत्री सारे इन हालात पर नजर बनाए, खुद भी गाड़ी ड्राइव करके अभी नुआकोट पहुंचे हैं। नुआकोट का एक बुजुर्ग जगह है जहां तक की सड़कें ठीक है, वहां पे कैंप भी बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर बालन शाह स्वयं आज सुबह वहां के लिए निकले और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को वो खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आर्मी के लिए भी सबसे ज्यादा मुश्किल है। जो डेड बॉडी है आप समझ सकते हैं कि ये कितनी रफ्तार में ये पानी आया था कि जो रसवा जिला है चाइना बॉर्डर से, वहां से डेड बॉडी बह के कल शाम तक जो है इंडिया के बॉर्डर के पास जो चितवन में नारायणी नदी है, उसके बाद जो दूसरी नदियां हैं सुस्ता में नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट में, वहां तक डेड बॉडी पहुंच गई। सबसे ज्यादा डेड बॉडी जो रसवा की वहां मिल रही है। तो इस तबाही का आलम इससे पता लग सकता है कि कितनी बड़ी तबाही हुई है।
1: बिल्कुल पंकज, गेटिंग अस दोस डिटेल्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, टेलिंग अस अबाउट द करंट सिचुएशन इन द कंट्री। माय कॉलीग आशुतोष मिश्रा हैज रीच्ड द डिजास्टर जोन इन नेपाल। अ लुक एट दिस रिपोर्ट।
2: सैलाब आया, उसने बहुत सारी जिंदगियों को तो लीला है, लेकिन उसके साथ लोगों की मालमत्ता भी छीन ली। यहाँ ये परिवार है, ये लोग 15 साल से यहाँ पर रहते हैं। देखिए बच्चा है छोटा सा और 15 सालों से ये इनका घर है। अब पानी देखिए आया होगा। अभी मैं नदी का स्तर एक बार जरा कैमरा उधर घुमा के दिखाता हूँ। अभी नदी का स्तर देखिए कितना कम है, बिल्कुल पानी नीचे है। आपको लग रहा होगा 8 से 10 फीट गहरा पानी होगा। अब आप ये सोचिए कि उस स्तर से लेके जब सैलाब आया होगा तब पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पूरा दलदल है, आगे जाना मुश्किल है। ये निशान देखिए दरवाजे पर, इतना ऊपर पानी आया है, यानी सीधा लगता है कि 100 मीटर से भी ऊपर पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ी। और जब वो इस तरह बेकाबू हुई, इसके बाद क्या दुकान क्या मकान सब उसकी चपेट में आए। वहां देखिए किसी की बाइक है, किसी की मेहनत की कमाई है, उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा। और ये इस तरह की भारी भरकम गाड़ियां हल्की तिनकी की तरह ऐसी बहती गई हैं कि आखिर लोग उसकी चपेट में आते तो उनके साथ क्या ही होता। बड़े बड़े पेड़ जंगल दरख्त सब उसकी चपेट में आ गए। अभी भी हवा जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार हवा में गूंज रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए अब एकमात्र जो जरिया वो हेलीकॉप्टर है। लेकिन पानी का प्रवाह आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या मुश्किल आई होगी, कितना डरे होंगे वो लोग। आई मीन नुआकोट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंडस्केप एंड सिटी नियर दी यू नो दी इंडो नेपाल तिब्बत बॉर्डर। नाउ दे से वी लॉस्ट दैट ब्यूटिफुल सिटी एंड क्लियरली आई हैव सीन दोज इमेजेस। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू दीज इमेजेस हाउ द सिटी नाउ लिटरली लुक्स लाइक। एवरीथिंग हैज टर्न्ड इनटू डेब्री। लुक एट दिस एंड दिस एक्सप्लेन्स हाउ फ्यूरियस यू नो दिस मेहम वाज़ द डेवास्टेशन। हैवी व्हीकल्स द वे दे हैव गॉन इनटू डेब्रीज एक्सप्लेन्स दैट द मोमेंट। लुक एट दिस, दीज आर बाइक्स, everything hard-earned money people made their houses, been living here ages, they have their memories of this. And that's right behind me is the Trishuli river. If you can see clearly the water level when it went as high as 30 to 40 meters perhaps was the reason, and then the magnitude, the energy that it had through the gravity through the landscape. Now one would wonder how exactly this came through. This is exactly the road that connect to Rosovo, and at few kilometers there's Trishuli point, and from there it's Rosovo, and this is exactly where the slide came through.
1: The big question really is what really triggered the floods in this country in Nepal. Well, let's tell you about what could be the possible reasons behind it. Theory number one, an avalanche probably blocked the river. The avalanche may have blocked the Lende River. Water accumulated behind the blockage and a sudden breach could have caused floods here. NDRRMA flags snow rock landslide. Here's another theory also, that quake avalanche link is something that could have led to this devastation. 4.4 magnitude earthquake has been recorded in this area. It was reported at 8:37 a.m. The flood then followed shortly after. The Nepal Foreign Minister flags possible link between the earthquake recorded in the morning and then what followed later on in the day. Glacial flood suspected. Heavy rain ruled out as the primary trigger here. Nepal Hydrology Department suspects that there could be a link with the glacier. Glacial lake outburst possibly be the reason behind this devastation. Satellite imagery also show debris-laden flood. Let's tell you about the sequence of events also. There was an earthquake earlier in the morning near the Nepal-Tibet border. The magnitude recording on the seismic scale, the Richter scale, was 4.4. The glacial lake, which is actually near the mountains, suddenly released the lake water. The ice rock avalanche in the side of Nepal, ice and rocks may have crashed into the Lendekhola River. The river there led to flash floods. Of course, there were flash floods there that hit the river near Nepal-Tibet border. The Bhote Koshi River, further into Nepal, the water and the debris swept through the valley. Let's get you more news coming in as far as Nepal is concerned. What we're learning is that the Bhote Koshi River wreaked havoc at a speed of 55 kilometers per hour. The flood that swept through the Bhote Koshi River in Rasuwa on Wednesday morning is considered one of the fastest ever recorded. The flood that swept away the Tumore market in a matter of minutes at 8:40 a.m. on Wednesday reached the riverside areas of four districts within about 3 hours. So far, 165 people have been confirmed dead in this disaster. A large number are missing. Pankaj continues to be with us. Pankaj, Med Department ka kehna hai ki jo flood ki jo pani thi, wo Rasu Vagadi ke samne pahunchi. Bas 15 minute mein itna sara pani achanak se aa gaya.
0: Aaj bilkul ek report jo hai yahan aapke samne kiya gaya hai. कितनी भयावह स्थिति थी, कितनी तीव्र गति से जो है चीन के बॉर्डर तिब्बत से जो नेपाल में पानी का बहाव था वो कितना तीव्र था कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। ये रिकॉर्ड किया गया ऑफिशियली कि कल जो सैलाब आया वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, जबकि सामान्य तौर पर जो है वो सिर्फ 5 मीटर प्रति घंटे प्रति सेकंड की रफ्तार से ही पानी बहता है। लेकिन कल का जो सैलाब था वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे इतनी तेज थी कि 13 किलोमीटर का सफर जो रसवा के ऊपर से जहाँ से ताल फुट के नीचे पानी आया वहाँ से सैकड़ी बेची नाम का जगह है वो 13 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक पहुंचने में बाढ़ के पानी को इस सैलाब को सिर्फ 15 मिनट का ही समय लगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी।
1: बने रहिए हमारे साथ पंकज, गेटिंग अस दोस डिटेल्स। पंकज दास रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो एंड टेलिंग अस अबाउट द करंट सिचुएशन एंड द स्पीड एट व्हिच द वाटर रियली केम, गिविंग एब्सोल्युटली नो चांस टू एनीबडी टू इवन थिंक व्हाट्स रियली गोइंग ऑन एंड द मैनर इन व्हिच इट केम एंड स्वेप्ट अवे सो मेनी पीपल। द नंबर ऑफ पीपल मिसिंग एज पर एस्टिमेट्स इज अराउंड 700। द वाटर वॉज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर्स पर hour, the speed at which nobody even got a fraction of a second to think what really is coming their way. More news coming in. This is the minister from Nepal and the big claim that has been made on missing Indians. 300 Indians are missing in the floods is what Nepalese Foreign Minister Shishir Khanal has said. He's also said more than 300 Indians are missing in these flash floods. There were rough estimates about the number of people missing. Several Indians have quoted this out on social media and are looking for their loved ones. Pankaj continues to be with us. Pankaj, bahut hi aapke Nepal ke saath saath hamare desh Bharat ke logo ke liye bhi bahut hi mushkil samay hai ye, kyunki kai sare aise isme bhartiye the, इंडियंस थे जो मिसिंग है। सरकार का ये मानना है कि 300 इंडियंस इन फ्लड्स में इस समय मिसिंग हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल, इस समय ये जो रसवा का इलाका, ये जो बॉर्डर है, उसी रास्ते से जो है भारतीय श्रद्धालु हैं वो मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं और इस समय काफी बड़ी मात्रा में जो है भारतीय यात्री मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे। कल ही जैसे हमने बताया कि 400 लोगों के आसपास उस जगह पर जो इमिग्रेशन ऑफिस है केरल का, वहाँ पे करीब 400 लोग थे, उनमें अधिकांश भारतीय श्रद्धालु थे। एक तो वो जगह, दूसरा जो गोसाई कुंड का एरिया जहाँ ये बाढ़ से तबाह हुए है, उसमें भी कल पूर्णिमा के दिन में एक बहुत बड़ा मेला लगता है और हजारों की संख्या में लोग जाते हैं जिनमें अधिकांश भारतीय भी रहते हैं, तो वहां से भी कुछ भारतीयों के मिसिंग होने की खबर है। इसी तरह कुछ लोग रास्ते में जो या तो मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे या आ रहे थे और रसवा के आसपास, धारी के आसपास, कुमारकोट के आसपास वो थे, बाई रोड यहाँ से जा रहे थे, तो ऐसे लोगों के भी मिसिंग होने की संभावना है। ठीक आंकड़ा अभी आने में अभी कुछ समय और लग सकता है।
1: जुड़ने के लिए पंकज दास द वेरी लेटेस्ट. इनफैक्ट बने रहिए हमारे साथ. वील जस्ट कम बैक टू यू पंकज इन अ मोमेंट फ्रॉम नाउ एज यू टेल अस एंड गिव अस अ कंप्लीट पिक्चर अबाउट द करंट सिचुएशन इन नेपाल. इट्स ऑल्सो व्यूअर्स टेल यू अबाउट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन. ऑफ कोर्स दोज इमेजेस ऑन आवर स्क्रीन स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ व्हाट रियली हैज हैपेंड देयर, बट ऑल्सो अबाउट you know, the situation in this country. Now, on your screens, what you actually see is the extent of destruction in Nepal. In images are before this disaster struck. But all things appear to be calm. And of course, those visuals give us an idea about mayhem that broke out, really. After all things appear to be calm. And of course, those visuals give us an idea about mayhem that broke out, really. Are well before the flash floods, before the floods fury, things appeared to be extremely normal there with the river flowing fairly peacefully. And also look at the calm there in this entire region. But once there were floods and we saw images of the same, there seems to be complete devastation and destruction on all sides. Remember the speed of the river water when it came crashing down on the buildings and on the people who were right there. It was at 55 kilometers per hour, which means that it was at extreme speed, giving not even half a fraction of a second for the people to think. Another cargo of relief has reached Nepal. That's the information that we have with us at this point in time. India is sending relief material to Nepal. 300 Indians are missing a relief material from India to Nepal. And another set of aid has there reached there. We have information on tons of relief material. This includes medicines, blankets and lamps at this point in time. Of course, India responding swiftly, being welcomed by Nepal as well, speaking volumes of the country's bilateral relationship. Mutual solidarity, says Nepal at this hour. India rushing emergency assistance to Nepal after a flash flood swept through the districts bordering Tibet, killing just so many people. The death toll there has increased. Shivani has more. India, in fact, has shown in the past as well, and this time being no different. The country stands with its neighbor, isn't it? It's sending relief material. This is only a part of what has been dispatched. There would be more humanitarian assistance, isn't it, Shivani, in days to come?
3: Sneha, this is the second aircraft of the Indian Air Force that is now flying 37 tons of relief material for Nepal. And yesterday night, there was a C-130J that had flown with 10 tons of relief material. And again, in the second batch, this Globemaster is taking the relief material to Nepal. There are food packets, there are medicines, there are things that might be required right now in Nepal, the solar lights and much more. And this is not all. There will be more batches of help that will be being sent to Nepal. And Prime Minister Narendra Modi, he has already spoken to Balin Shah, the Prime Minister of Nepal. And all the teams are vigilant and on a standby as the requirement comes from Nepal. More help will be reaching to Nepal. And this is how the initial batch of help is reaching Nepal. The army engineers, the medical teams, they are all on standby. The NDRF teams are on a standby. They will be going soon to Nepal. And much more help is on the way for the neighbor.
1: Shivani, with the very latest on that story, continue to be with us. We're telling our viewers about the current situation there as far as Nepal is concerned. Relief material being handed over to Nepal. India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and essential medicines aboard an Indian Air Force Z-130J aircraft is what has been said by the government. Supplies, viewers, includes emergency items, temporary shelters, blankets, hygiene kits, solar lamps and also medicines. Shivani continues to be with us. Shivani, at this point in time, what is being said by the Nepalese government is that there are 300 people who are missing from India, who were there in Nepal. India, of course, says something different. The toll, in fact, the number of missing people is around 113 or so. What else are you picking up on that front?
3: Sneha, now the numbers of the casualties and the missing is increasing. And when it comes to the missing Indians, still yesterday it was around 113. Now the figures have come from the Nepalese authorities, where they say that the figure of missing Indians is more than 300. And as the rescue operations are going on, the search operations are going on, more and more relief teams are reaching ground. These numbers are being ascertained, and these numbers are escalating. That's very unfortunate. So for India also, the situation is worrisome, because a lot of tourists were there on their way back to India from Kailash Mansarovar Yatra. The pilgrims, they were also stuck on the Nepal-China border, as we saw those devastating pictures of the immigration office being washed out in this outburst of the lake, the glacial lake. So the situation is changing, and the numbers are also escalating. The priority of the authorities in Nepal is to establish contact with these missing people, because, you know, the communication lines have been cut off completely. 20 bridges have been washed out. 40 kilometers of road has been washed out in this devastating deluge that happened yesterday. So these numbers are changing, and the confirmed figures are now being shared by the Nepalese authority. They say that more than 300 Indians are still missing.
1: I'm going to leave it at that for the moment, getting us those details. My colleague Shivani, they're telling us about how India has come to the rescue of, in fact, the country responding to the devastating floods in Nepal. More news coming in connection with the flash floods. Fury in Nepal. We had 32 devotees from Bengal who are missing in the country. 30 devotees, two tour managers are untraceable, is what we are learning. In fact, this was a family from Durgapur on a pilgrimage who are missing in Nepal. The family left Bengal on the 21st day of August for the country. Bengal pilgrims reach Rasuwa on Wednesday. My colleague Anupam getting in more on that story. Anupam, what can you tell us about this, in fact, group of pilgrims who are now missing?
4: Well, at least 32 people from Bengal are still missing, and out of them, two persons from Durgapur, a couple who went for the Kailash Mansarovar pilgrimage, and they left on 21st, and they are out of contact for the last night. And there is a concern in the family and in the neighborhood in Durgapur. People are searching them, calling them frantically, but getting no response. So, you know how the situation is at present. The Bengal government has also opened a helpline and control room in Bhawani Bhavan, the headquarters of Bengal police. And there have also been 12 SDRF teams have been placed and alerted in North Bengal for this deluge. And a lot of persons, especially those who are missing at present, the family members of those persons, people, the government, the people from government and government of West Bengal, and trying to help them. So these are things which are happening at present, but it's a very concerning and challenging situation for the families whose members have gone there for the pilgrimage and are still missing.
1: With the very latest on that story, extremely unfortunate, because there's so much concern regarding what would eventually happen to them. They're missing right now. We just hope that there is some information around them. Around about 32 devotees from Bengal, a family from Durgapur, which has gone missing here. 130 Indians, including many pilgrims on the Mansarovar Yatra, were missing. Scores of others were stranded in the country after flash floods swept through its central districts, unleashing devastation and cutting off affected areas. The whereabouts of 37 or 57 tourists from Tamil Nadu are yet to be ascertained, while 20 others have been accounted for. A 32-member group from Kolkata on Kailash Mansarovar Yatra was among many from West Bengal who went untraceable after flash floods in Nepal. Several people from UP were believed to be stranded. Farmer leader Rakesh Tiket, who had gone to Nepal via road with his associates, was stuck in Pokhara. 7 tourists from Maharashtra stuck in Nepal amid flash floods, with latest reports claiming that 4 of them are safe. A team of 36 people from Kerala touring Nepal was safe and away from the areas affected by the devastating flash floods. A devastating flash flood in Nepal. It has turned into a major rescue crisis for India, with over 130 Indian tourists yet missing after the sudden disaster struck the Nepal-Tibet border region. Among those caught in the catastrophe are more than 35 tourists from Tamil Nadu who were on a pilgrimage and traveled circuit towards the Kailash Mansarovar region. The families back home are desperately waiting for information, as communications remain severely disrupted in the flood-hit zone. Kelai Selvi from Tamil Nadu's Thiruvarur went on the same pilgrimage trip, has been stranded along with a group of other tourists. Mother Geetha, daughter of Vaishnavi relative Ananda Sundari of the same family from Puducherry, who went to Nepal on pilgrimage tour, are stranded there as well. A disaster has triggered an urgent political and administrative response in the state of Tamil Nadu back home here in the country, with the CM assuring assistance and directing officials to work towards the rescue of missing Tamils. The centre is also facing mounting pressure to accelerate the rescue operation. DMK MP Dayanidhi Maran has urged immediate intervention, calling for the missing Indians to be located, rescued and safely repatriated. AIADMK leader Edappadi K. Palanisamy has also demanded urgent action, calling the reports deeply shocking. EPS has urged the centre to expedite rescue operations in coordination with the Nepal government and ensure proper information sharing with Tamil Nadu.
5: நேத்து வரைக்கும் நேபாள இருந்து திபக்ல இருந்து கால் பண்ணாங்க, வீடியோ கால் பண்ணாங்க. நாங்க சேஃபா இருக்கோம், எது ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஆனா அப்புறம் நியூஸ் பார்த்த வாட்டைக்கு அதுல எமர்ஜென்சி நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் எமர்ஜென்சி நம்பருக்கு கால் பண்ண வாட்டைக்கு அவங்க வந்து சேஃபா இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனா கன்ஃபார்மா சொல்லல. அவங்க எல்லாரையுமே, அவங்க போன எல்லா மெம்பர்ஸுமே என்ன மாதிரி தானே அழுது தவிச்சிருப்பாங்க. எல்லாரையுமே கொஞ்சம் சேஃபா மீட்டு கொண்டு வந்துட்டா நல்லா இருக்கும்.
6: 23rd காலையில இங்கிருந்து கிளம்பி
1: We are going right across to these proceedings from the assembly in Tamil Nadu. We have a minister speaking on the flash flood situation, missing Tamilians. Let's take a listen.
7: அந்த வாகனம் நடுவுல சிக்கிக்கிட்டதாக முதல்ல தகவல் வந்தது. அந்த வாகனத்துல பயணம் செய்த 20 தமிழர்கள் தங்களுடைய உடைமைகளை எல்லாம் உடனே அங்க விட்டுட்டு உடனே அங்கிருந்து குயிக்கா எவாக்குவேட் செய்யப்பட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய ஆர்ம்டு போலீஸ் போர்ஸ், திமுரே பகுதியை சார்ந்த அந்த ஆர்ம்டு போலீஸ் போர்ஸ் என்ற பகுதியில சென்று அவங்க வந்து தஞ்சம் அடைகிறாங்க. பாதுகாப்பாக இப்ப அங்க தஞ்சம் அடைந்தவங்க இருக்கிறாங்க என்ற தகவலை நாங்க உறுதிப்படுத்திருக்கிறோம். தற்போது அவர்கள் மீட்கப்பட்டு மேலும் தரை வழியாக ஒரு ஆல்டர்னேட் ரூட் போடப்பட்டு காத்மாண்டு அடைத்து விட ஏற்பாடுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு.
8: We can assure you that tourists from Tamil Nadu are safe.
7: எங்க இருந்து கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள், நாம குறிப்பாக நம்முடைய தமிழர்கள் எத்தனை பேர் எங்க இருக்காங்கங்கிறது ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நாங்க வந்து தீவிரமா கண்காணிச்சிட்டு வரோம். அந்த நம்பர்
8: every single hour we have been monitoring where Tamilians are.
7: ஆனா வாய்ப்பும் இருக்கு. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில மீதமுள்ள 34 பேர்களை பற்றி விவரங்களை பெறுவதில் ஒரு தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் அது க்ளோஸ் மானிட்டர்ஸ்ல நாங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். 54 தமிழர்களையும் விரைந்து தாயகம் மீட்டு வரும்
8: பட் about 34 we have been able to do it. There are totally 7 Tamilians who have been stranded there.
7: அந்த நடவடிக்கை தனியாக நாங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். மேலும் இன்னொரு சென்னையில இருந்து எங்க கூட மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்ரா நிறுவனம் 49 தமிழர்களை இதே பர்பஸ்ல அங்க வந்து அழைத்து போயிருக்காங்க என்ற விவரமும் இப்ப தெரிய வந்தது. அவர்கள் பற்றி முழு விவரங்களை
8: பெறுவதற்கான 41 Tamilians நேபாள்
7: இந்த இடத்துல சிக்கி இருக்காங்க. அவங்களுடைய வேற பொசிஷன் அதையும் நாங்க வந்து தீவிரமா ஃபாலோ பண்றோம். மேலும் நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களுக்கு உதவி தேவைப்படக்கூடிய நிலையில் அவர்களோ அல்லது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களோ அவர்களினுடைய பாதிப்பு போலவே அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுடைய பாதிப்பு இன்னும் பெருசு பரிதவிச்சுட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாடு அரசினுடைய அயலக தமிழர் நலத்துறையின் கீழே ஒரு 24/7 கட்டணமில்லா உதவி எண்களை வந்து நாங்க வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணோம். இதுல வந்து 4 வகையை பிரிச்சிட்டோம். இந்தியாவுக்குள்ள இருந்தே அவங்க வந்து தொடர்பு கொள்றாங்கன்னா அது ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் 1800-309-3793. சப்போஸ் வெளிநாட்டில இருந்து தொடர்பு கொள்றாங்கன்னா அவங்க ஜஸ்ட் மிஸ்டு கால் விட்டா போதும், +91 இந்தியா கூட போட்டுட்டு 8069-00-9900. இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்பர் கடைசி
8: அனௌன்சிங் தி டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ஸ் தட் தி ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டாண்டட் தேர் கேன் ரீச் அவுட் டு. திஸ் இஸ் தட் இட் கம்ப்ளீட்லி
7: இந்த நம்பர். நானாவதா நம்முடைய தமிழ்நாடு இல்லம் நம்முடைய புதுதில்லியில ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறையை நாங்க வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். அதுக்கு 9289516712 இதையெல்லாம் நம்ம கொடுத்த உடனே அதுல எவ்வளவு நம்பர்ஸ் வந்தது, மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு எதிர்கட்சி தலைவர் கூட கேட்டிருந்தாரு, அது கிட்டத்தட்ட 937 அழைப்புகள் வந்தது. அவர்களுக்கு உண்டான கம்யூனிகேஷன் அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய தகவல்களையும் கொடுத்திருக்கிறோம். மேலும் இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு இல்லத்தில் ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டிருக்கே, அவங்க வந்து தீவிரமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி மற்றும் இங்கிருந்து போன சகல குழுக்களை சார்ந்த தமிழர்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய மீட்கப்பட்டவர்கள், மீட்கப்பட வேண்டியவர்கள், அது அந்த குறித்த ஒவ்வொரு மணி நேரமான தகவல்களும் சேகரிக்கப்படுகிறது. மேலும் நேபாள அரசுடன் தொடர்பு கொண்டு இதற்குண்டான உரிய நடவடிக்கைகளை கொலாபரேட்டிவா நேபாள அரசும் இந்திய அரசும் தமிழ்நாடு அரசும் ஒன்றிய அரசும் இப்படி பல்வேறு வகையான கொலாபரேட்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
8: Nepal government and Indian government has been jointly taking out the coordination and cooperation efforts to repatriate Indians who are stranded in Nepal. That's Raj Mohan there. Yes, he also says that 900 calls so far have been made the toll-free number.
7: ஒரு நல்ல போக்கல்ல ஐநா சபையில எஸ்டிஜி கோல்ஸ் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இதற்குண்டான தீர்வுகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. தயவு செய்து நம்முடைய மாமன்ற உறுப்பினர்கள் இதை போன்ற சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒரு பெரிய பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் உருவாக்கக்கூடிய சட்டங்களோ எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளோ இனி வருங்காலங்களில் இதை போன்ற இயற்கை பேரிடர்களை வந்து நம்மால் சமாளிக்கவே முடியாது, அதை போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்படாதவாறு கண்ணும் கருத்துமாக உருவாக்க வேண்டும். இதை குறித்து மேலதிக தகவல் கிடைக்கப்பெறும் போது மாமன்றத்தில் உங்கள் அனுமதியோடு உங்கள் மூலமாக தெரியப்படுத்தும் என்பதையும் தெரியப்படுத்துகிறேன். நன்றி.
9: பேரவைத்தலைவர்களே, பல்வேறு குழுக்களை நீங்கள் அமைக்கிறீர்கள். அதில் உச்சமாக இருக்கிற குழு என்பது அவை உரிமை குழு. ஏற்கனவே அவை உரிமை குழுவுக்கு உரிமை மீறல் என்ற அடிப்படையில் 2 கடிதங்கள் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு காலையில் கூட மாண்பு பேரவைத்தினுடைய தீர்ப்புக்கு மாறாக இயக்கப்பட்ட பகுதிகளை திருத்தி வெளியிடுகிறது சம்பந்தமாக உரிமை
10: பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர்
7: கூடுதல் தகவல். மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தற்போது அரசு நிகழ்வை முடித்துக் கொண்டு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் வந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவருடைய தலைமையில உடனடியாக ஒரு ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது. அமைச்சர் பெருமக்கள், அதிகாரிகள், பல்துறை வித்தகர்கள், சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையில இது குறித்து தீவிர நடவடிக்கை குறித்த ஒரு அவசர கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறத உங்கள் மூலமாக தெரியப்படுத்தி.
9: பேரவைத்தலைவர்களே, இந்த அவை உரிமை குழு என்பது ஒரு உச்ச அதிகாரம் படைத்தது உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா அதில் தண்டனை கொடுக்கிற அளவுக்கு கூட அதிகாரம் படுத்தது உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற குழு தான். ஆனால் 2 வாரம் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் உரிமை மீறி இருக்கிறார்கள் என்று அந்த அடிப்படையில் கடிதம் கொடுத்து நீங்கள் குழு அமைத்த உடனேயே அதை பற்றி பரிசீலனை செய்கிறோம் என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த விதி பேரவையினுடைய விதி புத்தகத்தில்
1: All right, we're shifting focus to some news coming in. The Prime Minister is addressing the Khelo India dialogue. Khel ki baat, PM ke saath listen hai.
11: Hame medal tally badhane ke liye in khelo mein bhi maharat hasil karni hi hogi. Ab jaise surfing aur sports climbing. हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इतना बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है जहां इस प्रकार के स्पोर्ट्स के लिए एक स्वाभाविक रुचि हो सकती है. हमारे पास वाटर स्पोर्ट से लेकर विंटर स्पोर्ट तक के लिए डेमोग्राफी भी है और जियोग्राफी भी है, लेकिन फिर भी हम ऐसे खेलों में दुनिया में कहीं दिखते ही नहीं हैं. इसलिए हमें अलग अलग जिलों में ऐसी संभावनाओं को तलाशना होगा जहां किसी एक खास स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम विकसित हो सके. और इसमें आज के इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है. साथियों, जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। और मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, सरकार उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी स्पोर्ट्स साइंस, ट्रेनिंग, कोचिंग और अनुभव साझा करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये आयोजन भी इसका उदाहरण है। खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है, वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए, नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छी पारिवारिक व्यवस्था के लिए, एक बेहतर कार्य संस्कृति के लिए स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट बहुत जरूरी होती है। और यह स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट खेल के मैदान में गए बिना सीखनी बहुत मुश्किल होती है। खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कंपटीटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, स्पोर्ट्स ये जज्बा हमारे भीतर लाता है। साथियों, खेलों से जीवन कैसे बदलता है, इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे पैरा एथलीट्स हैं। पैरा एथलीट्स को जब कोई मैदान में देखता है तो जीवन के बारे में सोचने का नजरिया बदल ही जाता है, और जब वो कुछ अचीव करता है तो उस एथलीट के साथ ही उसके पूरे परिवार को नई जिंदगी मिल जाती है। वो माँ बाप, भाई बहन जो अपने उस बच्चे को शुरुआती दिनों में संघर्ष करते देखते हैं, उनके लिए उस दिव्यांग खिलाड़ी की सफलता उनके सपनों को, उनके हौसलों को भी एक नई ऊंचाई दे देती है। साथियों, मैं खुद ऐसे प्लेयर से हमेशा इंस्पायर होता रहा हूं। अब जैसे आपने सबने नाम जो सुने हैं, आर्चरी में हमारी एक बेटी एक कमाल की खिलाड़ी है, नाम जानते हैं आप, शीतल। जब पैरालंपिक में उन्होंने मेडल जीता तो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। ऐसे ही हमारी एक और बेटी अवनी लेखरा है, जिन्होंने दो दो बार पैरालंपिक के मेडल जीते। मैं जब भी बेटी अवनी से मिलता हूं बहुत गर्व महसूस करता हूं। सुमित अंतिल हो, नितेश कुमार हो, और अभी अभी तो आपने नाम सुना होगा हमारे झंडू कुमार, ऐसे हमारे पैरा एथलीट्स हैं। ऐसे हर साथी हमें भी प्रेरित करते हैं। साथियों, स्पोर्ट्स एक बेहतर जीवन की गारंटी है। स्पोर्ट्स हमें बेहतर जीवन जीने के लिए फिट बनाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करता है। हम सभी फौजा सिंह जी के बारे में जानते हैं। पिछले वर्ष 100 वर्ष से ज्यादा की आयु में फौजा सिंह जी का निधन हुआ है। खेल के प्रति प्यार हो, फिटनेस हो, तो ये कैसे जीवन पर्यंत चलता है, फौजा सिंह जी इसकी मिसाल थे। उनका जीवन इस बात की बहुत बड़ी प्रेरणा है कि कैसे स्पोर्ट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपस में जुड़े हुए हैं। साथियों, स्पोर्ट्स का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, जो असली खिलाड़ी होते हैं उनमें ड्रग्स, नशे से दूर रहने की इच्छा शक्ति भी पैदा हो जाती है। आज जब नशे की इतनी बड़ी चुनौती युवाओं के सामने है तो स्पोर्ट्स इसमें भी बहुत सार्थक भूमिका निभाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत में स्पोर्ट्स एक बेहतरीन प्रोफेशन के तौर पर उभरा है। समाज में स्पोर्ट्स को लेकर नजरिया बदला है। आज आप देखिए, हमारे देश में लोग ट्रायथलॉन में हिस्सा ले रहे हैं, 5K और 10K रेसेस दौड़ रहे हैं, यार दोस्त मिलकर हाई रॉक्स जैसे चैलेंजेस को पूरा कर रहे हैं, कोई पहली बार शीर्षासन करने की खुशी मना रहा है, तो कोई दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर पीकल बॉल और बैडमिंटन खेल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इसको एक बड़े नजरिए से देखे तो इसमें बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। चेंज ये कि स्पोर्ट्स अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। अगर पढ़ाई और कैरियर का टाइम टेबल बन रहा है तो दिन भर के रूटीन में स्पोर्ट्स को भी जगह मिल रही है। और यही चेंज है, यही परिवर्तन है जिसके कारण भारत के स्पोर्ट्स फ्यूचर पर भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: All right, I will continue to get you more details on that big story that we are tracking. For the moment, it's a wrap on this edition. News continues on the other side.
10: You are watching India Today.
12: करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
13: ए यू
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: India's longest standing biannual survey is back. That's right, the mood of the nation.
16: The Gen Z mood check on India Today, most definitive mood tracker.
17: What's actually changed after the Gen Z protests? We get you the pulse of the people on India Today.
18: The report card is in. Unfiltered, unscripted, unmissable.
15: India Today's Mood of the Nation poll, 7 p.m. to 10 p.m. only on India Today.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: 25 मेंबर था टोटल हमारे ग्रुप में।
1: आप बताइए, आप बताइए, आपकी आवाज आ
0: हाँ
1: रही है।
0: मैडम, 25 मेंबर था हम। एक्चुअली काठमांडू से एक दो घंटा का यात्रा के बाद एक बटार बोल के गांव आया। बटार बटार बोल के त्रिशूल नदी होता, वो नदी वो पार होता है त्रिशूल नदी। वो बटार के पास हमारे सामने खाली हमारा बस 200 मीटर ओनली 200 मीटर के दूर से एकदम पूरा बाढ़ आया।
1: फिर क्या हुआ?
0: बहुत बहुत तो हम देखे तो इमेजिन नहीं करता, ऐसा बड़ा पूरा बहुत पूरा दुआ के साथ बहुत एकदम पानी आया मैडम। हमारा ड्राइवर एकदम गाड़ी रिटर्न करके हाइट प्लेस में लेके गया, हम बच गया।
1: तो आप अपनी फैमिली के साथ थे, आप अकेले थे उस टाइम पे, आप
0: नहीं
1: रोड पे
0: मैडम,
1: थे? अच्छा,
0: नहीं मैडम, हमारा सन्नी ना मैं दो था, मैं कर्नाटक से।
1: फिर वनीना जी, आप बता रहे थे आपके ड्राइवर ने वहां से गाड़ी हटा ली, क्या इम्पैक्ट उस टाइम पर फील हुआ?
0: मैडम वो हम बोल नहीं सकते, ऐसा इमेजिन वही रात भर तक मेरे को याद आ रहे, ये आ रहे, नींद नहीं होगा। बहुत मेरे सामने आ गया पूरा एकदम पानी, बहुत आ गया। हमारा हमारे के 10 मिनट पहले दो बस अभी कांटेक्ट में नहीं है, मिसिंग है। हमारे सामने गए सर बस, दो बस वेस्ट बंगाल का टूरिस्ट।
1: तो मलिना जी, अभी आप सेफ हैं? आपको किस तरह से रेस्क्यू किया गया वहां से?
0: मैडम उधर से क्या है मैडम, हमारा ड्राइवर पूरा हाइट प्लेस में जाके रुके 1 घंटे। रुकने के बाद पूरा रिटर्न जाने का रास्ता अच्छा है नहीं पूछ के कंफर्म करके फिर रिटर्न। 3 घंटा रिटर्न आके हम काठमांडू में होटल में सेफ है।
1: तो मलिना जी, आप बताइए, आप वैसे कहां से हैं और आप काठमांडू में यात्रा के लिए गए थे? अच्छा,
0: मैडम वही हम मानस सरोवर यात्रा के लिए गए थे।
1: एग्जैक्टली जब बाढ़ आई थी उस वक्त आप कहां थे?
0: वो एक्चुअली बाढ़ आए थे टाइम हम एक्चुअली वो बाढ़ हम तिमुरी जाने के था मैडम, चाइना बॉर्डर का तिमुरी
1: उसके बाद
0: तिमुरी
1: जब
0: बोल के,
1: आप, जी बोलिए।
0: तिमुरी बोल के इमिग्रेशन होता है वहां जाने का था। अभी 1 घंटे का रास्ता था।
1: तो वहां से जब आप काठमांडू वापस आए हैं, किस तरह की दिक्कतें आई? खाना पीना आपको मिला?
0: नहीं नहीं मैडम, क्या भी दिक्कत नहीं हो गया, हमारे ट्रैवल एजेंसी ने सब अरेंज किया है, खाना पीना का पूरा हमारा नेटवर्क भी वर्क रहा था। अब बाद में हमारा MP MLA सब कांटेक्ट में है। अभी हम सोफ जोन में है, सेफ जोन में है।
1: आपको कोई इंजरी आई इस दौरान?
0: नो नो मैडम, क्या भी नहीं हो गया मैडम, हमारा ड्राइवर हमारे को बच गया, नहीं तो हमारे सामने से देखे मैं
1: आपके साथ जो लोग थे वो सेफ है?
0: पूरा सेफ है मैडम। 20 हमारा साथ वाला तो टोटल 25 मेंबर पूरा वो आंध्र का है, सब लोग सेफ है, होटल में स्टे करे मैडम।
1: आपने अपनी फैमिली से बात की मलिनाथ जी?
0: हाँ बात किया मैडम, रात से कंटिन्यू कांटेक्ट में हूँ, बात किया मैडम। हमारा एजेंसी ने अभी रिटर्न टिकट बुक कर रहे हैं, हम कल नहीं तो आज नहीं तो कल हम रिटर्न जाते मैडम।
1: आप जब वहां से निकल रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशंस आपके सामने थे, लोगों को किस तरह से मदद मिली?
0: मैडम उधर क्या हो गया, एकदम बाढ़ आने के बाद गांव वाला लोग भी पूरा पैनिक हो गया, बहुत पूरा क्लाउड हो गया, वो बोल नहीं सकता, ऐसा सिचुएशन था मैडम।
1: कितने घंटे फंसे रहे आप?
0: एक्चुअली हम नहीं फंसे मैडम, एक्चुअली वो बाढ़ आ रहे था ना, आने के वो दिखने के बाद हमारा ड्राइवर इमिडिएटली रिटर्न करके हाइट प्लेस में लेके गया बस।
1: और आपके सामने आपने किस तरह का डिस्ट्रक्शन देखा?
0: सॉरी,
1: लोग जो आपके सामने थे,
0: हाँ
1: जो
0: हाँ हाँ वो मैडम बहुत पैनिक में था, उनका लोग कंटिन्यू फोन करके कौन कौन गया कौन कौन क्या है, पूरा सब लोग वो गांव वाला पूरा बटार बोल के गांव है, पूरा पूरा गांव का गांव पूरा परेशान में था।
1: आपको सुनने में आ रहा है, आप क्या सिचुएशन है वहां पर, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं?
0: हेलो, हाँ मैडम हम देखे मैडम, सब लोग नेपाली का पूरा मिलिट्री आ गया, वो हेलीकॉप्टर सब वो पूरा बचने के लिए पूरा हम देखे मैडम, देख रहे था मैं सामने देख रहे था, पूरा लोग आके पूरा ये कर रहे।
1: अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, आपने कभी ऐसा भयानक कुछ देखा है इससे पहले, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
0: नहीं मैडम, वो बोल नहीं सकता सर, एकदम आ गया पूरा, बहुत बहुत पूरा एकदम पानी आ गया, पूरा धुआं आ गया।
1: और फिर कितना
0: बहुत
1: समय लगा आपको
0: पैनिक
1: या वहां से सेफ जोन तक पहुंचने में? आप अगर फंसे रहे तो कितने घंटे फंसे रहे?
0: था। एक्चुअली हम क्या मैडम, एक घंटा उधर फंस गया था। बाद में पूरा फोन गेन करके हमारा ड्राइवर पूरा इधर नेपाल काठमांडू में क्लियर है क्या, पूरा पूछ के क्लियर है बोलने के बाद हम 1-3 घंटा का जर्नी रिटर्न करने के बाद हम नेपाल पहुंच गए मैडम।
1: तो जब आप वहां से निकल रहे थे, आपकी गाड़ी वहां से निकल रही थी, कितनी दूर तक आपको रियलाइज हुआ कि बाढ़ का इम्पैक्ट यहां तक आया है?
0: ओके ओके ओके, वो 1 किलोमीटर तक आए मैडम।
1: मनीना जी, आप ठीक हैं? आप सेफ हैं? आपकी अपनी फैमिली से बात हो गई है?
0: हाँ बात हुई मैडम हमसे, ठीक है। हमारा एमपी साहब, हमारा एमएलए साहब कंटिन्यू हमारे को कांटेक्ट में है। अब हम सेफ जोन में होटल में स्टे है मैडम, क्या
1: और अभी यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है? थैंक
0: भी दिक्कत नहीं मैडम। थैंक
1: यू हमसे बात करने के लिए।
0: यू थैंक यू।
1: सो देयर यू हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द विक्टिम्स हु थैंकफुली वाज रेस्क्यूड, बट मेनी ऑफ दोज हु आर स्टिल स्टक अंडर द डेब्री एज रेस्क्यू ऑपरेशंस आर अंडर वे, एंड लाइक यू सी ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्प हैज बीन एक्टिवेटेड, हेल्पलाइन नंबर्स दैट हैव ऑल्सो बीन पुट आउट for the families of those victims who may be stuck. Let me take this to my colleague Apurva to get a sense of the numbers that you may be picking up from the Vijay government, because we understand that many Tamilians who were part of that pilgrimage and they were stuck, some have been rescued. The Vijay government has activated all sort of helplines. What more are you picking up, Apurva? All right, not too sure if Apurva is still connected with us, but there you see many of those victims we are trying to get in touch with, some of them who are thankfully safe. They've been rescued, but tension still at its peak as the rescue operations are on in full swing, and more than 175 who are still missing. A devastating flash flood that literally took on this entire region in Nepal. It has turned into a major rescue crisis for India. Over 130 Indian tourists who are feared missing after the sudden disaster that struck the Nepal-Tibet border region. Among those caught in the catastrophe are more than 103 tourists from Tamil Nadu who were on a pilgrimage and travel circuit towards the Kailash Mansarovar region. Their families back home are desperately waiting for information as communications remain severely disrupted in the flood-hit zone. Kailai Selvi from Tamil Nadu's Thiruvarur, who went on the same pilgrimage trip, has been stranded along with a group of tourists. Mother Geeta, her daughter Vaishnavi, relative Ananda Sundari of the same family from Puducherry who went to Nepal on pilgrimage tour are also stranded. The disaster has triggered an urgent political and administrative response in Tamil Nadu, with Chief Minister Vijay assuring all sorts of assistance and directing officials to work towards the rescue of missing Tamilians. The centre is also facing mounting pressure to accelerate the rescue operation. DMK MP Dayanidhi Maran has urged immediate intervention, calling for the missing Indians to be located, rescued and safely repatriated. AIADMK leader Edappadi K. Palaniswamy has also demanded urgent action, calling the reports deeply shocking. EPS has urged the centre to expedite rescue operations in coordination with the Nepal government and ensure proper information sharing with Tamil Nadu.
2: நேத்து வரைக்கும் நேபாள இருந்து திபக்ல இருந்து கால் பண்ணாங்க, வீடியோ கால் பண்ணாங்க, நாங்க சேஃபா இருக்கோம், எது ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஆனா அப்புறம் நியூஸ் பார்த்த வாட்டைக்கு அதுல எமர்ஜென்சி நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் எமர்ஜென்சி நம்பருக்கு கால் பண்ண வாட்டைக்கு அவங்க வந்து சேஃபா இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க, ஆனா கன்ஃபார்மா சொல்லல. அவங்க எல்லாரையுமே, அவங்க போன எல்லா எல்லா மெம்பர்ஸுமே என்ன மாதிரி தானே அழுது தவிச்சிருப்பாங்க, எல்லாரையுமே கொஞ்சம் சேஃபா மீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டா நல்லா இருக்கும்.
3: 23ஆம் தேதி காலையில் இங்கேருந்து கிளம்பி கும்பகோணம் போய், கும்பகோணத்துலேருந்து பஸ்ஸில் போயிட்டு சென்னையிலேருந்து போனாங்க. போயிட்டுனே முந்தா நாள் காலையில் டெல்லியில் இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னாங்க. காலையில் காத்மாண்டு போகும்போது அதான் சேஃபாக இருக்கணும், அங்கே கண்ட்ரோல் ரூம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டப்ப சேஃபா இருக்கு. தாசில்தார் வந்தாங்க, திருவாரூர் தாசில்தார் வந்து பார்த்துட்டு விசாரிச்சுட்டு அதான் அந்த லிஸ்ட் வந்திருக்கு, இன்னும் பயப்பட வேண்டாம், உள்ளபடியே சேஃபா தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தைரியம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க.
4: சேஃபா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஃபோன் வந்து, ஸோ சேஃபா இருக்காங்க அது ஓகே, பட் அவங்க கூட இன்னும் டைரக்டா கான்டாக்ட் பண்ண முடியல. கான்டாக்ட் கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். அது திருப்பி எப்படி அவங்க ரிட்டர்ன் கூட்டணும் என்னது, இதுக்கு மேலதான் நாங்க பிளான் பண்ணோம். காலையில 6:30 காலையில் இப்ப ட்ரை பண்ணா சுவிச் ஆஃப் தான் வருது, சுவிச் ஆஃப் தான் எல்லா போனுமே சுவிச் ஆஃப் தான் வருது. அவங்களுக்கு திருப்பி எப்படி கூட்டணும் வரணுன்ற பிளான் பண்ணும்போது ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா நாங்க கேட்கறோம், அப்ப மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணா எங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். அவ்வளவுதான், ஸோ அவங்க கூட்டணும் மட்டும் தான் இப்ப ப்ரையாரிட்டியா இருக்கு.
5: கும்போணத்துலேருந்து சூப்பர் யாத்ரா ஏஜென்சி அப்படிங்கிற நிறுவனம் மூலமாக நமக்கு 57 பேர் இந்த நிறுவனம் மூலமாக கையில் போயிருக்காங்க. அதில் வந்து நமக்கு தஞ்சாவூரை சேர்ந்தவங்க 14 பேர், பாக்கி எல்லாருமே அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்திருக்காங்க. திருவண்ணாமலை, மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நிறைய இடத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. மொத்தம் 57 பேர் 3 பஸ்ஸில் போயிருக்காங்க. நேற்று ஈவினிங் வந்து நேபாளத்துலேருந்து திபெத் நோக்கி போகிறப்ப தான் இந்த ஆக்சிடென்ட். மொதல் பஸ்ஸு போயிட்டாங்க, ரெண்டாவது பஸ் மூணாவது பஸ் போகிறப்ப தான் ஏதோ சவுண்டு கேட்டிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட யார்ட்டையுமே தொடர்பு கொள்ள முடியல, அப்பப்போ டவர் கிடைக்கப்போ தான் பேச முடியுது. நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம், எல்லாட்டையுமே பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம், இன்னும் யார்ட்டையுமே அவங்கள்ட்ட பேச முடியல.
6: 23rd நைட்டு 57 பேர் கொண்ட ஒரு குழு கைலாயம் போகிறதுக்காக கிளம்புனது. 24th விடிகாலத்தில் 12:40 ஃப்ளைட்டு சென்னையில், டெல்லி போய் டெல்லியிலேருந்து காட்மாண்டு, காட்மாண்டில் மீட்டிங் முடிஞ்சு மறுநாள் காலையில் எல்லோரும் 8 அவங்களுக்கு குரூப்பை 57 பேர், மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த 2 பேர், 59 பேர் குரூப் அது. அவர் நான் மிலிட்ரி சீஃப் இன்ஜினியர் ஒருத்தர் அவர்கிட்ட பேசினேன், அவர்கிட்ட நீங்கள் ஒன்றும் டென்ஷன் ஆகாதீங்க சார், எங்கள் மிச்சம் இருக்கிற ஆளுங்க எப்படி இருந்தாலும் நாங்களும் வெளி ஆள் யாரும் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிட்டோம், அந்த ஏரியாவை யாரும் வெளியில் வர முடியாது, நாங்கள் உங்கள் ஆளுங்கள்லாம் 20 பேர் சேஃப்டியாக வச்சுருக்கிறோம், அவங்க இந்த நிலைமை சீரானவொன்னே உடனே உங்களுக்கு ஹெலிகாப்டர் போட்டு இது ஃப்ளைட்டு ஹெலிகாப்டர் போட்டு காட்மாண்டு அனுப்பிடுவோம், காட்மாண்டுலேருந்து நீங்கள் அழைச்சிட்டு போயிடுங்க அப்படின்ட்டுருக்காங்க. நாளைக்கு நான் அவங்களை அழைக்கிறதுக்கு காட்மாண்டு போகிறேன். மீதி உள்ளவங்க 37 பேர் வந்து இரவுக்குள்ளே சொல்கிறேன், எத்தனை பேர், நாங்கள் ஒரு 10-15 பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்கோன்னு சொன்னாங்க, அது யாருங்கிறது தெரியல, அங்கே போனால் தெரியும். எதுக்கும் உங்கள் நேம் லிஸ்ட் அந்த உங்கள் குரூப்பை சேர்ந்த நேம் லிஸ்ட் அனுப்புங்க, ஒத்து வருதா, பாஸ்போர்ட்லாம் கையில் வச்சிருப்பாங்க, அது ஒத்து வந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு தகவல் சொல்கிறேன்ருக்காங்க.
1: And those are the many voices coming in. Remember, some have been rescued and they put out their story. It was so horrific. Never something they had ever seen before. While the rescue operations are on in full swing, but even in India, the tension equally high, where the center is now being urged to ensure that Indians who are stuck in Nepal are rescued safely and brought back. Meanwhile, Sadhguru Jaggi Vasudev, who broke down over the deaths in flash floods, the spiritual leader, while addressing volunteers of the Isha Foundation, informed them that 80 people from his group had died in the tragedy. The volunteers broke down upon hearing the news. Sadhguru himself could not hold back his tears and broke down. He appealed to the Chinese authorities to allow him and a small team of volunteers to travel to Tibet's Gairong to help with the rescue operation. The tragic floods have so far claimed more than 165 lives in Nepal and Tibet, with more than 700 people who are still missing. Rescue operations are being carried out to save as many lives as possible. The flash floods that were triggered by a glacial avalanche near the Nepal-Tibet border, causing widespread destruction across the region and leaving hundreds dead and hundreds who are still missing.
7: Looking at the scale of destruction, it looks bad. The same building where we were for the immigration just a week ago, that entire building is washed away, and part of the town is washed away. We still don't know the other numbers. All communication is down, so we have no way. Within the hour, we informed all the embassies of these countries, both in India and Nepal, and we've been active in this, but there is really nothing much. At 9:05, we received a message from the group leader, who is Aishanga Praveen, who's been with us. At At 9:05, he sent a message that they have arrived at the immigration. So after that, this happened at 9:14. And Praveen, who was leading the team, who has been with us for more than 2 decades, is a full-time Ishanga with us. And we noticed that his Nepal phone did not come active through the... if he had crossed over, his Nepal phone should have come active. It did not come. So, literally, the entire group was there in the building. So, this is a... terrible and an extraordinary event, which unfortunately has turned out this way.
8: We are at this place called New Dongba in Tibet, which is just a day's drive from the border town, Jirong, where this tragedy has unfolded. And at the moment, we have several groups right now in Tibet, in different parts of Tibet, undertaking this yatra. Unfortunately, we had this one group of 77 participants today who were exiting Tibet and going back to Kathmandu after a very successful yatra about 9 or 10 minutes before the tragedy struck. And he shared with us that they had just reached the immigration and they will start the immigration process. And in about 10 minutes' time, we were not able to contact them again. We were not able to reach anybody in the group. And it took us some time to, grasp that what was happening there. Authorities are doing their best as we see it on the China side, from India side, and of course also Nepal side. But the communication systems are all down because of this flood. And it took several hours for us to even start getting tidbits of information. And the last video, if you see, which is going viral at the moment, that sort of tells the story of what actually happened there. Yeah. And but we are still waiting for some official information, which has not come as yet, because it's quite remote region, you see. Tibet is quite remotely located. And the tragedy was very huge. But from what we have heard, the military has started work there, and we hope to get some information soon from them. We do have some information on the Nepal side, where 3 of our volunteers were stationed. The whole of that town, which is called Timre, is wiped out, completely wiped out. And we have no information about 3 of these volunteers as well. Fortunately, we have Sadhguru here with us, and he's been completely on, and we have been trying to, he's been guiding us. We have been trying to reach out to various agencies, various embassies, because we had people from 19 different countries. And so we have been reaching out to all the 19 embassies, both in India and in Nepal. We have been reaching out to all the families of all the 77 plus these 3 people, 80 families. We've been reaching out to them personally, over the phone, over actually visiting them personally in wherever they are, trying to provide them all the support that we can provide to them emotionally with regard to updates, some information. We've been trying all of that, but it's still very difficult to comprehend that such a thing has happened.
9: Art of Living Foundation
1: founder, Sri Sri Ravi Shankar, expressed solidarity with the victims of the Nepal floods. Listen in to what he said.
9: Nature's fury and disaster has taken over Nepal at this hour. It has been such a wonderful place for people to visit, and many went as a pilgrim to Kailas Mansarovar Yatra, and many have them lost their lives. In this very difficult time, let's all show our solidarity with the people of Nepal and the affected families and the government of Nepal. Let's pray to Almighty for to give strength to all the victims who lost their near and dear ones. Let's hope that the country will limp back to normalcy very soon. And let's all work towards, saving the environment, especially in the Himalayan region.
1: A massive flash flood in Nepal's Bhote, Koshi, Trishuli River basin that struck Rasuwa and neighboring districts on Wednesday after flash floods surged from the Tibet side, leaving over 163 dead. The toll that could go higher. We are getting you the latest pictures of the devastation from the flood-hit Nepal. Nepal flash floods unleashed a massive wall of water at the Rasuwagadi border on Wednesday morning, with CCTV footage from immigration office on Chinese side capturing the sudden deluge as it violently surged through the border area. The footage shows the sheer force of the floodwaters as they swept through Rasuwa. The customs office at China's Kerung border, connected to Nepal's Rasuwagadi crossing, is a key route for containers entering Nepal and is also used by pilgrims travelling to Mansarovar. A sudden flash flood triggered by a sharp rise in the Bhote Koshi River from the Tibetan side struck Rasuwa district in Nepal. Siapru, Besi and Timore regions were severely hit, with villages, bridges, roads and infrastructure project sites washed away. Nepal police issued alerts for downstream districts along the Trishuli River basin, urging residents to stay vigilant and move to safer locations. At least 160 people have been killed. Hundreds have been missing after that flash flood and mudslide along the Nepal-Tibet border, washing away villages and damaged roads and infrastructure. The flood hit early on Wednesday in Rasuwa, just north of Nepal's capital, Kathmandu, with preliminary information suggesting it was caused by an earthquake triggering an avalanche with melted snow pouring into the Bhote Koshi River. The Nepal disaster that has also struck Nepal's hydropower sector. Nepal's energy ministry has said that around 430 megawatts of electricity supplies have been affected, largely because of damage to hydroelectric projects. That is more than 12% of the country's total installed hydropower capacity of 3.2 gigawatts. Around a dozen settlements in Kathmandu that have been affected. Devastating scenes from Betravati Bazaar show homes and businesses that were swept away as the powerful flash flood surged downstream from Rasuwa. Betravati is reported to be among the worst hit areas of Nuwakot district in central Nepal. Narayani River at Narayan Ghat has swollen to danger levels following a massive flash flood from the Bhote Koshi and Trishuli River basins. Powerful waves from the swollen Narayani River hit a Buddha statue in Narayan Ghat, Chitwan, as floodwaters rose in Nepal following the massive flash flood. Authorities have urged people living along the Narayani and other rivers to remain alert. Powerful flash floods tore through Nepal's Rasuwa district, sweeping away cars and multi-story buildings after surging across the border from Tibet. 114 persons who have been affected by the Bhote Koshi flash floods, who have been rescued with the mobilization of helicopters belonging to the Nepali army and private companies. Nepali police have also shared information that NA helicopter picked 85 persons waiting for rescue following the disaster since Wednesday morning. Similarly, the private helicopters airlifted 29 stranded ones to safety. A video showing the Nepal army rescuing a young man stranded on the rooftop of his house amid massive flash floods in Nepal has gone viral on social media. A huge wall of mud and rock collapsed into a river on the Himalayan border of Nepal and China's Tibet on Wednesday, triggering catastrophic flooding on the Nepali side that killed at least over 163 people who've been confirmed dead, left hundreds of tourists missing. An animation shows the Himalayan border region between Nepal and China's Tibet tracing the possible path of an ice rock avalanche believed to have triggered catastrophic flooding that killed at least 95 people and left hundreds missing in Nepal. Using pre-event imagery, the animation highlights the mountainous area northeast of the Rasuwagadi border crossing where authorities believe a mass of ice, rock and debris collapsed and moved through the region before unleashing a debris-filled flood downstream. Eyewitness footage captured a flood sweeping through a village in Nepal's Himalayan region on the 26th of August after a massive collapse of mud and rock triggered catastrophic flooding near the border with China's Tibet region. The video, filmed near Betravati Bazar in Uttar Gaya municipality, showed a torrent of flood water, mud and debris rushing down a mountainside and covering part of the settlement.
10: Why?
1: A huge wall of mud and rock collapsed into a river on the Himalayan border of Nepal and China's Tibet on August 26, triggering catastrophic flooding on the Nepali side. 163 people have been killed at least, and the death toll could mount further. Hundreds of tourists who are missing. The disaster has left over 500 tourists unaccounted for, of whom over 391 were foreigners and over 93 Nepalis.

0: आपकी साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से ये लड़कियां आती हैं, ये भी होनहार हैं, आप भी बड़ी अच्छी अदाकार, आप भी बड़ी होनहार अदाकारा हैं, आप जो अब कर रही हैं, उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, किसी की वेशभूषा पर बोलना, ये दिखाता है कि आपकी कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता वाली सोच है आपकी। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आप ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था और इसके खिलाफ हम खड़े थे, अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने, और इसमें अच्छी कोई कोई बुरी बात नहीं है।
1: दैट इज़ नन ऑफ हर बिजनेस। पहली बात तो मैं कहूंगी कि कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने, आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सेनन ने क्या पहना क्या नहीं पहना, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: 160 people killed, more than 400 missing, and still the search and rescue operations continues, which is the priority for Nepalese authority at the moment. One of the most beautiful landscape and city near the the Nepal-Tibet border. Now they say we lost that beautiful city, and clearly I have seen those images. Now let me take you through these images, how the city now literally looks like. Everything has turned into debris. Look at this, and this explains how furious this mayhem was, the devastation. Heavy vehicles, the way they have gone into debris explains that the moment. Look at this, these are bikes. Everything, hard-earned money, people made their houses, been living here ages. They have their memories of this. And that's right behind me is the Trishuli River. If you can see clearly, the water level when it went as high as 30 to 40 meters perhaps was the reason. And then the magnitude, the energy that it had through the gravity, through the landscape. Now, one would wonder how exactly this came through. This is exactly the road that connects to Rosovo. And at few kilometers, there's Trishuli Point. And from there, it's Rosovo. And this is exactly where the slide came through. The moment we see that avalanche, flash flood, whatever it was, it only brought the devastation. So that's the Trishuli right behind me, and the road that connects to Rosovo. Entire road was washed away. And look at the magnitude of the disaster. All these building structures, 30 to 40 feet. In fact, if you see right across, that's the Trishuli River flowing still with the full flow. And that's Grameen Vikas Agriculture Development Limited. Look at the entire structure. The whole building was under a debris. That was the flow. And that also explains the water flow was up to 30 to 40 feet. Now on the other side, that's the ATM right behind me, which was also got inundated, not only mud and debris, still. And this explains the furious devastation. Still the debris. And it is very loose. The moment someone, even put a step right here, you literally go in the debris. Look at this. What has happened? Heavy vehicles. These are heavy transport vehicles. And look at what had happened. That was the power flow and magnitude of the devastation triggered by the Trishuli Rivers, what came from the Tibet Plateau and all the roads. The biggest challenge for the authorities are to ensure road connectivity, because unless you have that, the operation will only depend on the air sorties, because the number of air sorties will be limited looking at the weather conditions. Largely depends on the weather condition. But moreover, though, people who stranded in Rosovo and other parts, they need to be evacuated, and for that the road connectivity will be very essential. So beyond this point, since all it has covered in a thick layer of debris, though all areas, these heavy machineries are trying to clear the road, and as and when it becomes, that will really make an uphill task for all the authorities. Because you see these vehicles, the trucks, the movements, that explains how furious the situation it was. I just crossed halfway through Nuwakot Market, and then I was told by the people that extremely right side, all they were the residential areas of the people who are living here. Just across side were the largely shops, hotel, commercial property holders, and everything that was like any other city. But all it looks like today is only a ghost town. Everyone who just somehow tried to escape are now hunting back to find out leftover belongings to, continue their life. But these images are so horrific, doesn't give hope to bring back the life anytime soon. It is going to be extremely difficult from restoring the connectivity, bringing the life here, electricity, communication, and then ensure safety and security, because the terrain that it looks like after one of such glacial outbursts, what if there is another? There is a sense of fear amongst the people, and perhaps many of those do not even want to return in this kind of situation. Hovering these choppers are ensuring maximum number of the people to be rescued, but no one knows how many would be even beneath these debris. And this was one of the largest towns. Thousands were living here, and in few seconds, this has all turned a ground of debris.
1: So what exactly triggered this devastating flash flood? According to initial reports, the chain of events may have begun near the Nepal-Tibet border, when a massive ice and rock avalanche crashed down from a glacier. The avalanche is believed to have blocked the Lende Khola River, creating a natural barrier and causing water to build up behind it. And then the barrier gave way. The sudden release sent a massive surge of water, mud and boulders crashing downstream through Nepal, turning the river into a destructive wall of water. The flood then swept through downstream areas, damaging homes, roads, bridges and critical infrastructure. The exact cause is still being investigated, including the policy of a glacial lake outburst contributing to the surge. And India has sent humanitarian aid to Nepal. A second flight took off from Hindon, carrying 37.5 tons of humanitarian assistance and disaster relief material, medicines and food packets for flood-ravaged Nepal. Earlier, India had sent 10 tons of humanitarian aid to Nepal, consisting of medicines, hygiene kits and blankets. India has assured Nepal that it stands firmly with the country. Meanwhile, NDRF IG NS Bundela has informed India today that four NDRF teams are on standby for Nepal and the government will take the final call depending on the requirements. He also informed that West Champaran and adjoining areas are on high alert. On Wednesday, Prime Minister Modi spoke to the Nepalese PM and conveyed his condolences. He also stated that India stands in solidarity with Nepal and is ready to provide all possible assistance. Nepalese PM Balen Shah, on the other hand, has thanked Prime Minister Narendra Modi for the aid and support. He also hailed India-Nepal ties, saying that he deeply values the bond between the two nations.
2: स्टेट जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बिहार में रिव्यू कर लिया, यूपी में रिव्यू कर लिया, जो जिले इफेक्ट होने वाले उसमें लोगों को सेंसिटाइज कर दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटाइज्ड है और एनडीआरएफ की जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट थी वहाँ भी ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है. वेस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर एरिया इधर से जो फ्लो होके जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी टीम्स डिप्लॉय कर दिए. यूपी में कुशीनगर एरिया में इम्पैक्ट होता है वहाँ भी टीम डिप्लॉय की हुई.
3: ये एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोबमास्टर. एयरक्राफ्ट इज वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म. ये वी कैरी आउट अराउंड 70 टन्स ऑफ पेलोड हम कैरी कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ इसमें हम अराउंड 35 टू 40 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल कैरी कर रहे हैं, जो कि एनडीआरएफ का सम लोड है, टेंटेज है, डिग्निटी किट्स एंड मेडिकल एड हम कैरी कर रहे हैं. ये एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन में स्टैंडर्ड दो पायलट होते हैं, बिकॉज ये एचएडीआर मिशन है तो हम तीन पायलट, दो लोड मास्टर और चार ग्राउंड को कैरी कर रहे हैं. हम 1 घंटे 15 मिनट तक हम जाएंगे, फिर लैंडिंग करने के बाद बिकॉज टनेज ज़्यादा है तो हम एक्सपेक्ट करें 3 से 4 घंटे में इसकी ऑफलोडिंग हो जाएगी, फिर 4 घंटे के बाद हम टेक ऑफ करके वापस हिंडन भी रिकवर करेंगे.
1: The Nepal disaster has triggered concern across several states in India, with more than 300 Indians still reported missing, even as rescue operations continue on a war footing. While a majority of those stranded are from southern states, reports suggest that people from several other parts of the country are also unaccounted for. This includes at least 32 persons from West Bengal, at least 7 from Maharashtra, while several people from Uttar Pradesh are also reported missing. Focusing on Kolkata, of the 32 Bengal pilgrims missing in the Nepal disaster, 30 are tourists and 2 are travel agents. They were part of a Kailash Mansarovar group travelling with Kolkata-based Cholo Jai Club. The group also includes an Indian expatriate based in the US. Their last contact was established around 8 a.m. on Wednesday, just before the floods hit. Among those untraceable at the moment are Durgapur couple Arindam and Moshami Ganguly, who were en route to Saibrubesi as part of the Kailash Mansarovar pilgrimage. The travel group had left on August 21st, but there has been no contact since the floods hit Nepal. The couple had last spoken to their daughter before communication was lost.
4: यहाँ से 16 तारीख को निकला था, काठमांडू के लिए 17 तारीख को पहुंच गया था. वहां से कैलाश यात्रा के लिए निकल गए थे. उसके बाद तो हम लोग कॉन्टेक्ट कर रहे थे, वीडियो कॉल भी हो रहा था, ठीक ठाक ही चल रहा था. जब मानसरोवर में जब गया तो वहाँ पे ठीक ही था, वहाँ पे वीडियो कॉल भी हुआ था, ठीक ठाक ही था. लेकिन जब परिक्रमा का टाइम आया है तब दादा ने बोला है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बॉम्बिंग हो रही है. तो फिर उसने एजेंसी के लोग को बोला है हमको छोड़ दीजिए, काठमांडू तक छोड़ दीजिए. तब उसने बोला ठीक है छोड़ देंगे. उसके बाद एक बार दादा से बातचीत हुई थी, मेरी दीदी को बोला था मैं आ रहा हूँ. एजेंसी लोग बोला है हाँ हम लोग लेकर आते हैं, आप लोग काठमांडू में आ जाइए. फिर मेरा हस्बैंड वहाँ पे गया कल को लेने के लिए. तब
5: उसके बाद से कोई जोगाजोग हुआ?
4: संपर्क नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है.
1: Over 130 Indians, including many pilgrims on the Mansarovar Yatra, were missing, and scores of others have been stranded in Nepal after the flash floods swept through its central districts, unleashing devastation and cutting off affected areas. The whereabouts of 37 of the 103 tourists from Tamil Nadu are yet to be ascertained, while 20 others have been accounted for. Several persons from UP were believed to be stranded, including farmer leader Rakesh Tiket, who had gone to Nepal via road with his associates, who is currently stuck in Pokhara. Seven tourists from Maharashtra are stuck in Nepal amid flash floods, with latest reports claiming that four of them are safe. A team of 36 from Kerala touring Nepal declared that they were safe and away from the areas affected by the devastating flash floods. Seven from Andhra Pradesh have so far been identified as missing or stranded, while four have been traced safe but remain stranded. Efforts are underway to locate the remaining three missing persons. Minister Nara Lokesh is personally leading and coordinating rescue efforts to ensure the safe return of all Andhra Pradesh residents stranded or missing in the flood-affected areas of Nepal. Two people from Kalburgi who were stranded amid severe floods in Nepal have been rescued and shifted to a safe location. Karnataka Disaster Management authorities have contacted the duo and gathered information about their situation. The state government is now making arrangements to bring them back from Nepal to Delhi, with accommodation planned at Karnataka Bhavan.
6: Belagavi, we are getting reports that some people are there, but it is not ascertained. Kalburgi, two people from Chincholi are stuck in the Nepal floods, and that has been reported to our SPs. And I urge through the media that if there is any information that you have about our people from our state missing in Nepal, please get in touch with the local police station as soon as possible, or at least the district SP. And if you inform us, we will ensure that the right communication channels will be opened for their relatives and friends.
7: Sir, 3 years. Ippudu kuda me Manasarovar yatriki vachamu. Aithe mem chaala save ayyamu. Adantha Ishwarni prabhavam anukunta. Next aithe maa travels vallu kuda mammalni chaala jagrattaga chusukuntunnaru. ఎక్కడైనా సరే అకామిడేషన్ కానీ ఫుడ్ కానీ ట్రావెల్ చేసే విధానంలో కానీ చాలా బాగా చూసుకుంటారు. దానివల్లే అనుకుంటా మాకు ఈరోజు మేము ఇంత సేఫ్గా బయటపడ్డామంటే అదంతా ఆ కృష్ణయ్య ఆ శివయ్య అనుగ్రహమే. నెక్స్ట్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళ ద్వారా కూడా మేము చాలా బాగా రీచ్ అయ్యాము. మాకు పాస్పోర్ట్స్ లేట్ అయ్యాయి అని చెప్పి మేము చాలా ఫీల్ అయ్యాము. అయితే లేట్ అవ్వడం కూడా చాలా మంచిదని ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది. ఏది జరిగినా మనం మంచికే అని అనుకోవాలంటారు చూడండి, అట్లా జరిగింది.
1: ఇండియా టుడే హస్ ఆల్సో స్పోకెన్ టు ఎ స్ట్రాండెడ్ ఇండియన్ హూ క్లెయిమ్ దట్ హీ హెయిల్స్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక అండ్ రిమైన్స్ స్ట్రాండెడ్ ఇన్ కాఠ్మండు. లెట్స్ లిసన్ ఇన్ టు వాట్ హీ హ్యాడ్ టు సే.
8: आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, आप सेफ हैं, आप ठीक हैं, अभी आप कहाँ हैं काठमांडू में?
9: मैडम, हम एक्चुअली कल सुबह 6 बजे से हम यात्रा स्टार्ट किया था.
8: फिर
9: हमारा टोटल 25 मेंबर था, टोटल हमारा ग्रुप में.
8: आप बताइए आपकी आवाज आ रही है.
9: मैडम, 25 मेंबर था हम. एक्चुअली काठमांडू से 1-2 घंटा का यात्रा के बाद एक बटार बोल के गांव आया. बटार बोल के त्रिशूल नदी होता, वो नदी वो पार होता त्रिशूल नदी, वो बटार के पास हमारे सामने खाली हमारा बस 200 मीटर ओनली 200 मीटर के दूर से एकदम पूरा बाढ़ आया.
8: फिर क्या हुआ?
9: बहुत बहुत हम देखे तो इमेजिन नहीं करता, ऐसा बड़ा पूरा बहुत पूरा धुआं के साथ बहुत एकदम पानी आया मैडम. हमारा ड्राइवर एकदम गाड़ी रिटर्न करके हाइट प्लेस में लेके गया, हम बच गया.
8: तो आप अपनी फैमिली के साथ थे, आप अकेले थे उस टाइम पे, आप रोड पे थे?
9: नहीं मैडम, हमारा सन्निला मैं दो था, मैं कर्नाटक से.
8: फिर वनीना जी, आप बता रहे थे आपके ड्राइवर ने वहां से गाड़ी हटा ली, क्या इम्पैक्ट उस टाइम पर फील हुआ?
9: मैडम वो हम बोल नहीं सकते, ऐसा इमेजिंग भाई रात भर तक मेरे को याद आ रहे ये आ रहे नींद नहीं होगा, बहुत मेरे सामने आ गया पूरा एकदम पानी बहुत आ गया। हमारा के 10 मिनट पहले दो बस अभी कांटेक्ट में नहीं है, मिसिंग है, हमारा सामने गए सब बस, दो बस वेस्ट बंगाल का टूरिस्ट।
8: तो मलिना जी अभी आप सेफ हैं, आपको किस तरह से रेस्क्यू किया गया वहां से?
9: मैडम उधर से क्या है मैडम, हमारा ड्राइवर पूरा हाइट प्लेस में जाके रुके एक घंटे, रुकने के बाद पूरा रिटर्न जाने का रास्ता अच्छा है नहीं पूछ के कंफर्म करके फिर रिटर्न, 3 घंटा रिटर्न आके हम काठमांडू में होटल में सेफ है।
8: तो मलिना जी आप बताइए आप वैसे कहां से हैं और आप काठमांडू में यात्रा के लिए गए थे?
9: मैडम वही हम मानस सरोवर यात्रा के लिए गए थे।
8: एग्जैक्टली जब बाढ़ आई थी उस वक्त आप कहां थे?
9: वो एक्चुअली बाढ़ आए थे टाइम हम एक्चुअली वो बाढ़ हम तिमुरी जाने के था मैडम, चाइना बॉर्डर का तिमुरी।
8: उसके बाद जी बोलिए,
9: तिमुरी बोल के इमिग्रेशन होता है वहां जाने का था, अभी 1 घंटे का रास्ता था।
8: तो वहां से जब आप काठमांडू वापस आए हैं किस तरह की दिक्कतें आई, खाना पीना आपको मिला?
9: नहीं नहीं मैडम क्या भी दिक्कत नहीं हो गया, हमारे ट्रैवल एजेंसी ने सब अरेंज किया है खाना पीना का, पूरा हमारा नेटवर्क भी वर्क रहा था, बाद में हमारा MP MLA सब कांटेक्ट में है, अभी हम सोप जोन में है।
1: 31 pilgrims from Hyderabad, including former DRDO chairman Dr. G. Satish Reddy, are reported to be safe after narrowly escaping a flash flood that struck the Nepal-Tibet border region during their Kailash Mansarovar Yatra. The pilgrims had crossed the flood-affected areas on Wednesday morning, just hours before the flash flood struck, and later became stranded in the Saga area of Tibet. Saga is the key halt on the route to Mount Kailash and Lake Mansarovar. According to information available, all 31 members of the group are safe. They are currently in Saga and are exploring their return to Hyderabad through the Tibet-China route instead of travelling back through the flood-hit Nepal route. The flash floods in the Rasuwa-Girong region along the Nepal-Tibet border have disrupted road connectivity and left several pilgrims and travellers stranded or unaccounted for. The Hyderabad group's narrow escape comes amid continuing efforts to trace pilgrims caught in the disaster and restore communication and transport links in the affected region.
10: Tibet side Lupsang. Lupsang ji. And my Nepali staff manager Rajender, these are all my Nepali staff. Mikandri Delsu Nina Anukokunda, Okavipat Jargindi, Chala Mandi, Yellalo Baipurthunaru, my family members alone are, my family members alone are, Ratranta Goda, my phone just Cheptunar and Mata, Nen Chepen, Yem Baipadakarle Dandi, Andrum Shemanga now, Aite Ivala, Nine Mur Parikram Muginskuni, Kailas Parikramo, Darchen Gochon, Safe Gono. ఇవాళ మేమంతా ఇక్కడ మానసరోవరం దగ్గర ఉన్నాం, బేస్ క్యాంప్ దగ్గర. ఇక్కడ నుంచి ఇవాళ సాగాకి వెళ్తాం. చైనా కూడా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాక ఏ రూట్ మాకు ఇస్తే ఎగ్జిట్కి ఆ రూట్ నుంచి మేము రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, సేఫ్ మూమెంట్స్లోనే వస్తున్నాం. సో భగవంతుడి దేవాలు మేమంతా క్షేమంగా ఉన్నాం. ఇదిగో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ చూసుకోండి, ఎక్ బార్ సబ్కో దిఖావ్, హలో వీడియో పూరా దిఖావ్, ఐసా గుమాకే దిఖావ్, ఆరా సాబ్. సో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారమ్మా, ఒకసారి చూసుకోండి. అలాగే ఇందులో కొంతమంది ప్రముఖులు కూడా ఉన్నారు, మన సతీష్ రెడ్డి గారు, తర్వాత ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు. వీఆర్ ఇన్ ఎన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ, మేము వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా తీసుకోవడానికి పాజిటివ్గానే ముందుకెళ్తున్నాం. సో డోంట్ వరీ, వీఆర్ ఆల్ ఇన్ సేఫ్ పొజిషన్, వీ రిటర్న్ వెరీ హ్యాపీలీ అండ్ సేఫ్లీ బై గాడ్స్ గ్రేస్. అండ్ కైలాసనాథుడు మా వెంటున్నాడు, హనుమంతుడు మన వెంటున్నాడు. ఇప్పటిదాకా మనకి ఎప్పుడూ ఏ ప్రమాదాలు జరగలేదు, ప్రమాదాలు అనేవి చెప్పి రావు. కాకపోయినా మేము కూడా ఇప్పుడు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని మేము సేఫ్గా వస్తామని తెలియజేస్తూ మీ బంధువులందరూ కూడా మీ ముందర చూపిస్తున్నాం అండి. జై శ్రీరామ్.
11: ఓం నమః శివాయ.
1: And Abdul Bashir is joining me on this story. Abdul, you're getting this information from the tourists from Andhra Pradesh and other areas who are now in Nepal. What more can you tell us about those who've been tracked down, and what more can you tell us about those who we are still trying to find?
11: Well, came to know that 31 Hyderabad pilgrims were right in the flash flood area just hours before the flash flood struck that particular place in Nepal. They have just crossed that place, and after which they heard the news of the flash flood, and then they started moving toward a safer area. I spoke to the former DRDO chairman, Satish Reddy Garu, who said that they are right now safe and all of them are being shifted to Saga in China, where their alternate route is being analyzed by the China authorities, is what is being said. They are closely in touch with the Indian authorities, Indian embassy there, and also making sure that their return is safe, as the immigration office has also been struck down by the flash floods that have taken place over there. All these 31 members are right now on the way to Saga, and very soon they will reach their base camp in Saga, and after which their update regarding the next course of action will be given by the authorities, is what they have to say. What we are learning is that there is another woman who is now missing from the who has gone to the Kailash area, where Suhasini, she was there in the flash flood region, is what the family members have to say. She has not been in contact since yesterday. The family members are trying to trace her down. They have also contacted the authorities. Now, when we spoke to the family member here in Hyderabad, they said that they are closely in touch with the authorities to know the whereabouts of Suhasini. She is basically an engineer, software engineer who stays in Australia and runs a software company here in Hyderabad, is the basic information we have got. Suhasini Reddy is her name. She is right now missing, and her whereabouts are to be known.
1: All right. Thank you very much for that, Abdul Bashir. And all the best to all those who are stranded there. And we hope that Ms. Suhasini Reddy, who Abdul was just mentioning, will be found very soon. A devastating flash flood in Nepal, and it has turned into a major rescue crisis for India, with over 130 Indian tourists feared missing after the sudden disaster struck the Nepal-Tibet border region. Now, the Tamil Nadu Chief Minister Vijay has chaired an emergency meet. Among those caught in the catastrophe are more than 103 tourists from Tamil Nadu who were on a pilgrimage and travel circuit towards the Kailash Mansarovar region. Their families back home are desperately waiting for information, as communications remain severely disrupted in the flood-hit zone. Kailash Selvi from TNS Thiruvarur, who went on the same pilgrimage trip, has been stranded along with a group of tourists. Mother Geeta, daughter Vaishnavi, relative Ananda Sundari of the same family from Puducherry, who went on to Nepal on the pilgrimage tour, are also stranded. The disaster has triggered an urgent political and administrative response in Tamil Nadu, with CM Vijay assuring assistance and directing officials to work towards the rescue of missing Tamils. The centre is also facing mounting pressure to accelerate the rescue operation. DMK MP Dayanidhi Maran has urged immediate intervention, calling for the missing Indians to be located, rescued and safely repatriated. AIA DMK leader Edappadi K. Palaniswamy has also demanded urgent action, calling the reports deeply shocking. EPS has urged the centre to expedite rescue operations in coordination with the Nepal government and ensure proper information sharing with Tamil Nadu.
12: நேற்று வரைக்கும் நேபாளில் இருந்து திபக்கில் இருந்து கால் பண்ணாங்க, வீடியோ கால் பண்ணாங்க. நாங்கள் சேஃபாக இருக்கோம், எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அப்புறம் நியூஸ் பார்த்த வாட்டைக்கு அதில் எமர்ஜென்சி நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் எமர்ஜென்சி நம்பருக்கு கால் பண்ண வாட்டிக்கு அவங்க வந்து சேஃபாக இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனால் கன்ஃபார்மாக சொல்லலை. அவங்க எல்லாரையுமே, அவங்க போன எல்லா மெம்பர்ஸுமே என்ன மாதிரி தானே அழுது தவிச்சிருப்பாங்க. எல்லாரையுமே கொஞ்சம் சேஃபாக மீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டால் நல்லாயிருக்கும்.
13: 23rd காலையில் இங்கேருந்து கிளம்பி கும்பகோணம் போய், கும்பகோணத்துலேருந்து பஸ்ஸில் போயிட்டு சென்னையிலேருந்து போனாங்க. போயிட்டுனே முந்தா நாள் காலையில் டெல்லியில் இருக்கும்பா அப்படின்னாங்க. நேற்று காலையில் காத்மாண்டு போகும்போது சேஃபா இருக்கு, அங்க கண்ட்ரோல் ரூம் போன் பண்ணி கேட்டது சேஃபா இருக்கு அப்படின்னு. தாசில்தார் வந்தாங்க, திருவாரூர் தாசில்தார் வந்து பார்த்துட்டு விசாரிச்சுட்டு அதான் அந்த லிஸ்ட் வந்திருக்கு, ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம், நல்லபடியாக சேஃபா தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தைரியம் கொடுத்துருக்காரு.
14: சேஃபா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து ஃபோன் வந்தது. ஸோ சேஃபா இருக்காங்க அது ஓகே, பட் அவங்க கூட இன்னும் டைரக்டா காண்டாக்ட் பண்ண முடியல. காண்டாக்ட் கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். அது திருப்பி எப்படி அவங்க ரிட்டர்ன் கூட்டணும் என்னன்றது இதுக்கு மேலதான் நாங்க பிளான் பண்ணோம். காலையில 6:30 மணிக்கு காலையில
15: பேசுவோம்.
14: இப்ப ட்ரை பண்ணா சுவிட்ச் ஆஃப் தான் வருது, சுவிச் ஆஃப் தான் எல்லா ஃபோனுமே, சுவிச் ஆஃப் தான் வருது. அவங்க திருப்பி எப்படி கூட்டணும் வரணும்ன்ற பிளான் பண்ணும்போது ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா நாங்க கேட்கறோம், அப்ப மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணா எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஸோ அவங்க கூட்டணும் மட்டும் தான் இப்ப ப்ரையாரிட்டியா இருக்கு.
16: கும்போணத்துலேருந்து சூப்பர் யாத்ரா ஏஜென்சி அப்படிங்கிற நிறுவனம் மூலமாக நமக்கு 57 பேர் இந்த நிறுவனம் மூலமாக கையிலாக போயிருக்காங்க. அதில் வந்து நமக்கு தஞ்சாவூரை சேர்ந்தவங்க 14 பேர், பாக்கி எல்லாருமே அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்திருக்காங்க. திருவண்ணாமலை, மயிலாடுதுறை, திருவாரூர் நிறைய இடத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. மொத்தம் 57 பேர் 3 பஸ்ஸில் போயிருக்காங்க. நேற்று ஈவினிங் வந்து நேபாளத்துலேருந்து திபெத் நோக்கி போகிறப்ப தான் இந்த ஆக்சிடென்ட் இருந்தது. மொதல் பஸ்ஸு போயிட்டாங்க, ரெண்டாவது பஸ் மூணாவது பஸ் போகிறப்ப தான் ஏதாவது சவுண்டு கேட்டிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட யார்கிட்டையுமே தொடர்பு கொள்ள முடியல, அப்பப்போ டவர் கிடைக்கிறப்ப தான் பேச முடியுது. நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம், எல்லாத்தையுமே பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம், இன்னும் யார்கிட்டையுமே அவங்கள்ட்ட பேச முடியல.
17: 23rd நைட்டு 57 பேர் கொண்ட ஒரு குழு கைலாயம் போகிறதுக்காக கிளம்புனது. 24th விடிகாலத்தில் 12:40 ஃப்ளைட்டு சென்னையில், டெல்லி போய் டெல்லியிலேருந்து காட்மாண்டு, காட்மாண்டில் மீட்டிங் முடிஞ்சு மறுநாள் காலையில் எல்லோரும் 8 அவங்களுக்கு குரூப்பை 57 பேர், மகாராஷ்டிரா சேர்ந்த 2 பேர், 59 பேர் குரூப் அது. நான் மிலிட்ரி சீஃப் இன்ஜினியர் ஒருத்தர் அவர்கிட்ட பேசினாட்ட, நீங்கள் ஒன்றும் டென்ஷன் ஆகாதீங்க சார், எங்கள் மிச்சம் இருக்கிற ஆளுங்க எப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் வெளியே ஆள் யாரும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டோம், அந்த ஏரியாவை யாரும் வெளியே.
8: And I'm now being joined by Ashika Tamang, who is the Member of Parliament of Nepal from Dharing, which is one of the areas which has been affected by the floods. Ms. Tamang, thank you very much for speaking to India Today. I'll keep it very... Abhi kya situation hai? Kya bata sakte hain aap hame rescue operations ke baare mein? Kyunki aapke district mein, Dharing mein, Rasua mein... और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट नुआकोट में काफी डिस्ट्रक्शन हुई है, काफी डैमेज हुआ है, क्या बता सकते हैं आप अभी क्या इन्फॉर्मेशन है?
18: इधर बहुत इधर का अवस्था जो है कंडीशन एकदम नाजुक है. इधर वो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट बोथ आर कट अप इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लाइक रसुआ एंड दादिंग ऑल्सो. And we have here is a big issue because we cannot connect each other because of connection problem. That's why here is wo log hai na wo uska udhar last jo sab death body hai wo se collection ke dauran mein hum idhar jo river side mein collect ho raha hai wo death body. उसका जो वो बहुत ज्यादा है, उसको हम ये इधर का पुलिस प्रशासन, इधर का हमारा नेपाल का सब लोग मिलकर, नेपाल सरकार सिक्योरिटी सिस्टम सबसे मिलकर इधर बहुत कोशिश कर रहा है. हम सब लोग एक मिलजुल कर इधर का प्रॉब्लम का हल करने के प्रयास कर रहा है मैडम
8: जी. अंशिका जी, मुझे ये बताइएगा कि उस इस समय आप कहाँ पर हैं और वहाँ आसपास क्या हो रहा है और ऑफिशियल फिगर्स क्या हैं, अभी सरकार क्या कह रही है, कितने लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कितनी डेड बॉडीज मिली हैं, कितने लोग मिसिंग हैं अभी?
18: हाँ, आज तक आज के दिन तक 145 डेड बॉडी से हमारे रसुआ डिस्ट्रिक्ट से मिला है. तो हमारे अभी मैं ये अफेक्टेड एरिया में हूँ, इसका नाम गजूरी धादिंग बोलता है इस इलाके को. इधर भी 27 लाख अब पड़ी है, उधर हेल्थ सेंटर में पड़ रही है. उधर तो वो लाश के वो बुकबू आ रही है क्योंकि इधर इतना गर्मी है तो स्मेल आ रही है. तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ भी वो है ना, रास्ते सब बंद ब्लॉक है,
19: फ्लोट नहीं करके
18: वो हिलो क्या कहता है हिंदी में,
19: फ्लोट
18: में फ्लोट
19: नहीं करके
18: हाँ तो ब्लॉकेज है रास्ते पे, सब रास्ते ब्लॉकेज है, तो उसको लाने पे दिक्कत है, उसको लाने में प्रॉब्लम है, तो हेली को मातम भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमारे पास उतना इनफ वो हेलीकॉप्टर हेली नहीं है ना, इसलिए तो हम कैसे ये काम करेंगे, तो हम स्थानीय सरकार और केंद्रीय सरकार और संघीय सरकार के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं मैडम
1: जी. What more can you tell us about the situation around you और बाकी क्या हो रहा है आपके आसपास? आप जैसे कह रहे हैं कि आप लोगों के पास हेलीकॉप्टर्स की कमी है.
18: अभी तो जो पीड़ित लोग हैं उसको उसके लिए हम राहत के बंदोबस्त उनके जो घर है घर में वो क्या बोलते हैं ना सब टेंट के लिए हम कर रहे हैं, तो उनके लिए बेसिक नीड फूड वाटर एंड दे नीड आल्सो हेल्थ बिकॉज वो जो फ्लड से आ रही है तो जो स्मेल वो इतना बैड है, तो हम लोग इतने हेल्थ में उन लोग के हर एक तो हम कोशिश मैडम जी.
1: जी आशिका जी, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी. चीन में चाइना के जो बांध है डैम है वहां से पानी छोड़ा गया, क्या उसकी वजह से तबाही और बाढ़ को ज्यादा भयावह बनाया? क्या नेपाल को इसकी जानकारी दी गई थी?
18: मैडम जी हमने बुझ लिया, समझ लिया.
1: मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या चाइना ने नेपाल को बाढ़ की जानकारी दी थी? क्या आप लोगों को बताया गया था कि पानी का बाढ़ का खतरा है? चाइना की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आई थी आपके आपकी सरकार के पास?
18: वो तो आया था हमारे पास, लेकिन किस कारण से बिल्कुल हुआ है, वो तिब्बत से आया ना, तो इधर रीजन है खाते ना वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई द फ्लड इज लाइक दैट.
1: ओके, एक कैन यू टेल मी वन थिंग, चाइना इज मेकिंग अ नंबर ऑफ डैम्स एंड हाइड्रोजन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स. चाइना बहुत सारे बांध बना रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है, इसको लेकर नेपाल में क्या कोई चिंता है? क्या इन लोग इन डैम्स की वजह से क्या सोचते हैं आप लोग, क्या इसकी वजह से और खतरा बढ़ेगा?
18: हाँ, वो लोग बनाना तो उनका अधिकार की बात है ना वो बनाने के लिए, लेकिन उन लोग ने उसको दीर्घ कालीन उनको नॉट टेम्पोररी जस्ट परमानेंटली सोल्यूशन भी उनको होना चाहिए, ताकि उनका छिमे की कंट्री को उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं. प्रॉब्लम होना ना चाहिए मैडम जी. हम इधर हेल्प के लिए आए, कैसे आए हैं, तो हमारे पास उतना वक्त नहीं है
1: जी.
18: तो हमें जाना पड़ता है क्योंकि वो लोग है ना, वो हमें फूड पैकेज रिलीफ पैकेज वो ले ले. हाँ, वो वेट कर रहा है.
1: थैंक यू वेरी मच तमंग फॉर स्पीकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट. वी होप जितनी जल्दी हो सके सब लोग रेस्क्यू हो जाए. थैंक यू वेरी मच.
18: ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
1: एंड दैट वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम धारिंग इन Nepal, who spoke to us just now. She's saying that rescue and relief operations are underway. It is a problem because of the lack of road access because of the floods, and they are looking for helicopter. They are waiting for the center to send in helicopters, relief through helicopters. They are setting up tents and health care systems at this point. But moving on, back in India, Sadhguru Jaggi Vasudev breaks down over the deaths in the flash floods. The spiritual leader, while addressing volunteers of the Isha Foundation, informed them that about 80 people from his group had died in this tragedy. The volunteers broke down upon hearing the news, and Sadhguru himself could not hold back his tears. He has appealed to the Chinese authorities to allow him and a small team of volunteers to travel to Tibet's Girong to help with the rescue operations. The tragic floods have so far claimed more than 165 lives in Nepal and Tibet, with more than 700 people still missing. Rescue operations are being carried out to save as many lives as possible. The flash floods were triggered by a glacial avalanche near the Nepal-Tibet border, causing widespread destruction across the region and leaving hundreds dead or missing.
19: Looking at the scale of destruction, it looks bad. The same building where we were for the immigration just a week ago, that entire building is washed away. And part of the town is washed away. We still don't know the other numbers. All communication is down, so we have no way. Within the hour, we informed all the embassies of these countries, both in India and Nepal. And we've been active in this, but there is really nothing much. At 9:05, we received a message from the group leader, who is Aishanga Praveen, who's been with us. At 9:05, he sent a message that they have arrived at the immigration. So after that, this happened at 9:14. And Praveen, who was leading the team, who's been with us for more than 2 decades, is a full-time Ishanga with us. And we noticed that his Nepal phone did not come active through the... if he had crossed over, his Nepal phone should have come active. It did not come. So, literally, the entire group was there in the building. So, this is a... terrible and an extraordinary event, which unfortunately has turned out this way.
1: Art of Living Foundation founder Sri Sri Ravi Shankar also expressed solidarity with the victims of the Nepal floods. Let's listen in to what he had to say.
20: Nature's fury and disaster has taken over Nepal at this hour. It has been such a wonderful place for people to visit, and many went as a pilgrim to Kailas Mansarovar Yatra, and many of them lost their lives. In this very difficult time, let's all show our solidarity with the people of Nepal and the affected families and the government of Nepal. Let's pray to Almighty for to give strength to all the victims who lost their near and dear ones.
21: Conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible assistance, humanitarian assistance from our side. First, let me update you on the Indian nationals who are stranded or who are not contactable at this point in time. As per information currently available, there are 288 Indian nationals who remain uncontactable. These include 73 Indian nationals who are working on Trishuli One power project. Our embassy in Kathmandu is in touch with the project head to get more details about these people. As you well understand, that communication lines in that area, they are totally disrupted, and therefore it has been difficult to get in touch with people on ground. So the first group of 73 people who are working on Trishuli 1 power project, then two separate groups of 37 and 49 nationals from Tamil Nadu, Indian nationals from Tamil Nadu, who traveled for Kailash Mansarovar Yatra through Samrat and Fly Everest Travels. These are two separate travel agents. Then a group of 32 nationals from Indian nationals from West Bengal who traveled with the help of Samrat Travels in Timure, which is in Rasuwa district where this particular disaster has happened. Then a group of 61 Indian nationals from different states who traveled through Richa Tours. And then a group of 33 Indian nationals from Kerala. So these are five major groups who comprise by and large the 288 people that we are talking about. Let me also say that we are making all efforts to reach out to our people through the Nepalese authorities. We will have more updates for you on this particular matter, and we'll try to keep you updated as soon as possible. Let me also say the as of 1300 hours today, we have been able to rescue 21 Indian nationals. These 21 group of 21 people are from Tamil Nadu, and we are making available their names on our X handle so you can get the details. Our embassy, our ambassador has spoken to people in the group and have assured all possible help. They are coming to Kathmandu, hopefully, and then arrangements will be made for their travel back home as soon as possible. Let me also give you an update on the Chinese side. We have received information that a number of Indian nationals who had gone on the Kailash Mansarovar Yatra are currently stranded on the Chinese side. Our embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. There are approximately 200 Indian nationals there who have sought our assistance for evacuation. Of them, 95 are in Darchan and currently proceeding to Hilsa to cross over into Nepal. 4 are in Geelong city, 13 Zutulpuk, and they are en route to the town of Saga, and 60-70 others who are also heading towards Saga. Our mission is in touch with local authorities, and they are doing their best for their rescue and evacuation. Let me also tell you that there may be some people who are missing there, and we are trying to our best to locate them through the local authorities. Separately, we have received information about persons of Indian origin, including a large group from Isha Foundation, comprising people of Indian origin, some foreign nationals, and maybe some Indian national there who remain uncontactable. As I said in the beginning of my remarks, the information that we are providing you is based on the preliminary information that has been shared with us. We are in a dynamic situation, and we will have more updates on the figures that I just spoke about. On the relief work, the assistance that we have provided, as you would have seen through the releases that have been put out by us, two aircraft with humanitarian assistance have been sent to Kathmandu. A C-130J aircraft took off yesterday at around 8:30 p.m. carrying 10 tons of relief material, including temporary shelters, blankets, hygiene kits, solar lamps, medicines, etc. And then this morning, a C-17 aircraft departed with 37.5 tons of supplies, comprising 28.5 tons of relief items such as tents, blankets, hygiene kits, solar lamps, dewatering pumps, kitchen sets, gen sets, etc. 8 tons of medicine and 1 ton of food items. In total, across the two departures by air, India has sent 47.5 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. Let me say that further assistance is also being considered. We are also mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue efforts and relief efforts. We have set up a control room here in the Ministry of External Affairs, which will function around the clock. Details of the helpline and the control room telephone numbers are being put out on our X handle, and you should be getting them soon. Our embassies, both in Kathmandu and Beijing, they have also set up 24/7 helplines. We've also been in touch with the state governments from where people have traveled on Kailash Mansarovar Yatra, and we've also been in touch with them through the Ministry of Home Affairs. So this is the update I have for you. If there are any questions, I'll be happy to. इस त्रासदी में के बारे में आपको कुछ चीज़ें अवगत कराना चाहता हूँ. सबसे पहला कि जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर, जो इस त्रासदी में जिस पे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिसे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है. इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है. दूसरा ग्रुप है 137 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं. ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे. तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए. चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए. और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं. तो ये पांच समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं. इसके अलावे चीनी, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहां भी कई एक लोग हैं जो वहां पर अभी, चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं. करीबन 200 का आंकड़ा है. हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए. इसमें से 200 लोग जो हैं, उसमें से 95 लोग दार्चिन शहर की तरफ, वहाँ से हिल्सा पार करके नेपाल में आने की कोशिश कर रहे हैं. 4 लोग जिलोंग शहर में, 30 लोग जुटुलपुक जो कि सागा की तरफ आ रहे हैं, एक और शहर है, और 60-70 लोग जो हैं सागा की तरफ आ रहे हैं. जैसा कि मैंने बताया कि 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, और उनसे हमारी बातचीत भी हुई है, हमारे एम्बेसडर की बातचीत हुई है, और ये लोग वहां से निकलने के बाद काठमांडू आएंगे और काठमांडू से फिर भारत की यात्रा करेंगे. इन लोगों के अलावे कुछ भारतीय मूल के लोग भी हैं जो ईशा फाउंडेशन के साथ वहां गए थे, उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है. उसमें कुछ भारतीय मूल के लोग हैं, कुछ हो सकता है कुछ भारतीय नागरिक भी हों, या और उसके अलावे कुछ विदेशी नागरिक भी हैं. जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार जो आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये जो प्रिलिमिनरी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया है उसके तहत है. एक तरीके से जो जो हमारे पास अपडेट आएगा उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे. जहां तक रिलीफ वर्क की, रिलीफ और रेस्क्यू की बात है, रिलीफ जो हम लोगों ने मानवीय सहायता प्रदान किया है नेपाल को, उसके बारे में जिक्र कर दूं. हालांकि आपने देखा होगा जो प्रेस रिलीज और जो एक्स पोस्ट के माध्यम से हम लोगों ने बताया है, लेकिन वह फिर से मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा. दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है. पहला जहाज जो 26 तारीख को 8:30 बजे सवेरे यहां से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, काठमांडू कुछ देर बाद पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, उसके अलावे हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह, इस प्रकार की चीज़ें हैं. दूसरा जहाज C-17 जहाज, वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और शायद पहुँचने वाला हो या पहुँच गया होगा। और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम, जिसमें कि टेंट है, ब्लैंकेट्स हैं, कंबल, सोलर लैंप्स, पंप, किचन सेट्स, जेन सेट्स वगैरह हैं, और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री। कुल मिला के दोनों जहाजों में 37.5 टन के इमरजेंसी रिलीफ सप्लाई हमारे यहाँ से गया है, और भी इसके आगे जो हमसे हो सकता है असिस्टेंस, जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे। और चूंकि आपको पता है कि जिस क्षेत्र में ये बाढ़ आई, वहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत वहाँ पर कमी हो गई है, उस कारण से जो बेली ब्रिजेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मांग है, उसको भी हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे मंत्रालय में 24 घंटा चलने वाला हेल्पलाइन नंबर, एक कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके जो भी नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर, उसके अलावा फ़ोन के नंबर, ईमेल वगैरह, वो सब एक्स पोस्ट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे दूतावास नेपाल में और बीजिंग में, दोनों वहाँ भी 24 घंटा लगातार वो वहाँ पर हेल्पलाइन चला रहे हैं और लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। वो जो 21 लोगों की जो बात हमने कही कि 21 लोग तमिलनाडु से जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनकी जानकारी हम आपको हमारे एक्स पोस्ट के माध्यम से दे रहे हैं, उनका नाम दे रहे हैं, ताकि उनके परिवारजन को और उनके लोगों को तक ये बात पहुंच सके और उनमें आश्वासन आ सके। जो जो हमारे पास अपडेट आएगा, हम आपको बताते रहेंगे। हाँ प्रणय,
0: डेथ फिगर्स के बारे में क्या कोई कंफर्मेशन हुआ है? क्या उसमें कोई इंडियन है, नेपाली साइड में भी और चाइनीज साइड में भी?
21: तो डेथ फिगर्स के बारे में अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रकार से स्थिति जो है वो लगातार बदल रही है, वहाँ पर एक डायनेमिक सिचुएशन है, और जो ही हमारे पास और कुछ साझा करने को होगा, हम आपसे साझा करेंगे। जी लक्ष्मी।
2: सर, ये जो चीनी साइड में 200 के करीब भारतीय आपने कहा फंसे हुए हैं, मतलब या इनमें से कुछ लोग जैसे लापता है नेपाल में?
21: नहीं, ये 200 लोगों की बात जो मैं कह रहा हूँ तो फंसे हुए हैं, तो स्टैंडर्ड है, इनको निकाला जाएगा वहाँ से। कुछ लोग हो सकता है कि वहाँ लापता हो, जिसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। हम लोग भी इस पर एक गणना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ताकि और उस पर भी कोई जो हमारे पास अपडेट होगा उसके आपको हम साझा करेंगे।
22: Siddhant from beyond, will India send field hospitals as well, something that we have seen in the past as well?
21: तो जो भी सहायता का रिक्वेस्ट, अनुरोध वहाँ से आता है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे तरफ से तो जैसे कि मैंने बताया कि
1: And that was the press conference that is currently going on, the MEA briefing the media about the situation, the data, the numbers that we currently have of Indians who are either missing or stranded. We're getting back the press conference. Let's get back to the press conference.
23: आप लोग संपर्क में, मिशन उनसे टच में है, तो उनसे कोई जानकारी मिली है कि 73 जो भारतीय हैं वहाँ, वो लोग कहाँ हैं, आखिरी वक्त में कहाँ थे या ये?
21: तो त्रिशूली के जो प्रोजेक्ट है उनसे हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो 3-4 जिले हैं जो इससे ग्रसित हैं, वहां पर जो भी संचार के माध्यम है सब टूट चुके हैं, तो किसी से कोई बात नहीं हो पा रही है। तो एक बार ज्यों ज्यों स्थिति बेहतर होगा, हम लोगों को और सूचना मिलेगी, जिससे हम आपको साझा करेंगे। कादम्बिनी
24: शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। सर, क्या नेपाल की तरफ से कोई विशेष मदद की मांग आई है? क्योंकि वहां पर जिस तरह से आपदा है, काफी बड़ी है, वहां पर पूरी सेना, पुलिस वगैरह लगी हुई है, तो उसके अलावा कोई ऐसा स्पेशल रिक्वेस्ट आया हो? जी,
0: तो इस जो अनुरोध आया है उसी के मुताबिक हम लोगों ने उनको सामग्री उपलब्ध कराई है, हमारी मानवीय सहायता, और जैसा कि मैंने बताया कि बेली ब्रिजेस के लिए मोबिलाइज करने के लिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें बताई मैंने कि हम लोग जो उनको प्रदान किया है, उनको भेजा है, वो उन्हीं के अनुरोध के हिसाब से, और जो उनकी तरफ से जो अनुरोध आएगा उसको हम पूरा करेंगे, पूरा करने की नहीं तो कोशिश करेंगे। ऋषभ
3: Sir Rishabh from NDTV. Sir, will NDRF be mobilized? Has there been any special request for NDRF? And given that we have seen at least 16 of their bridges have been have collapsed because of the flood, so has Army's Engineering Corps, who specializes in temporary bridge building, have they also been mobilized or will they be mobilized?
0: तो बेलीज ब्रिज के बारे में उन्होंने कहा कि उसको मोबिलाइज करने के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, और जहां एनडीआरएफ की बात आपने कही इस पे मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। केशव,
4: थैंक यू स्पोक्सपर्सन। केशव फ्रॉम द प्रिंट। आई जस्ट वांटेड टू आस्क वेदर इंडिया इज कंसीडरिंग एनी फाइनेंशियल एड।

0: focus has been to supply humanitarian assistance as per the request of the Nepalese side. As I told you, our Prime Minister had a conversation yesterday where we said that we'll we'll offer all possible assistance from our side. Akhilesh.
1: Sir, I'm Akhilesh Sohan from DD News. We heard that External Affairs Minister was taking a review meeting with ambassadors of both Nepal and China, could you understand that what was the reason of this sudden flash flood? Was China sharing the data on real-time basis or not?
0: So on this particular aspect, I don't have any information, but we all saw the tragedy and the disaster, and we saw the visuals across social media platforms and on television. We don't have any more information as to the origin of this particular disaster. Sahil.
2: Sir, Sahil Pandey from ENI News Agency. Will there be more relief flights to be sent from India to Nepal, or is there anything on schedule, if you can share with us?
0: So, as I said, that further assistance is being considered, and as and when we have more flights, we'll keep you updated. Sanjeev.
3: नमस्कार सर, संजीत त्रिवेदी न्यूज 24 से. सर, चूंकि आप लोगों की अभी बैठक हुई है, विदेश मंत्री ने ली है, तो वही जानकारी के जो जानकारियां आ रही हैं उन पर विश्वास किया जाए, या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये भयंकर त्रासदी हुई
0: है? ये जो बैठक थी, ये बैठक इस कारण से किया गया कि किस प्रकार से हम लोग भारतीय समुदाय को जो वहां फंसा हुआ है उसको किस प्रकार से मदद दे सकते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है हमारे लोगों को रेस्क्यू के लिए, उनके रिलीफ के लिए, और साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमारे तरफ से जा रहा है, सबको बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए किस प्रकार से हम लोग एक देखिए, जब भी इस प्रकार के कोई भी काम होता है तो ये टीम वर्क है, तो सबको मिलकर बात करना और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत जरूरी हो जाता है. कविता.
4: सर, कविता जोशी हूँ हरिभूमि न्यूज़पेपर से. सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो भारत ने चलाया है, इसको क्या कोई नाम दिया गया है या ऐसी कोई तैयारी है कि जैसे बाकी देशों में भी हम चलाते हैं तो वहां पर भी कोई कोड नेम होता है, तो इस ऑपरेशन का भी कोई कोड नेम है? और जैसे अभी रेस्क्यू मटीरियल जो है उसकी सप्लाई अभी हम एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से कर रहे हैं, तो जब हम लोगों को लाने के लिए वापस लाएंगे भारतीयों को जो वहां पर फंसे हुए हैं, तो उनमें सिविल फ्लाइट्स का भी ऑप्शन है या मिलिट्री फ्लाइट्स का भी रहेगा? थैंक यू.
0: तो वहाँ पर जो लोग काठमांडू आए हैं, काठमांडू से तो लगातार यहाँ हम लोग कनेक्टिविटी है, तो उस माध्यम से वो लोग आ जाएंगे हमारे यहाँ, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. समस्या है कि वहाँ से जो ऊपर के जो जिले हैं जहाँ पर ये त्रासदी हुई है, वहाँ से कैसे लोगों को निकाला जाए. तो कोड नेम तो अभी नहीं दिया गया है, जैसा कि हम लोग हर
5: So this was the MEA spokesperson briefing the media about the currently available information as the rescue operation continues. 73 Indian workers at the Trishuli Power Project continue to be missing and are being traced. More data also being given by the MEA spokesperson about other tourist groups from India who are now, who we are trying to trace. 288 persons total missing from India at the moment. Around 200 people are stranded on the China side, and as of 1 o'clock, 21 Indians have been rescued. That's the information latest coming in from the MEA spokesperson. But now it's time for us to go across to Sakshi Batra of Business Today, who joins us with all the updates of the markets. Over to you, Sakshi.
6: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
7: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
8: Presented by National Stock Exchange.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: आपकी साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से ये लड़कियां आती हैं, ये भी होनहार हैं, आप भी बड़ी अच्छी अदाकार, आप भी बड़ी होनहार अदाकारा हैं, आप जो अब कर रही हैं उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, किसी की वेशभूषा पर बोलना, ये दिखाता है कि आपकी कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता वाली सोच है आपकी। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आप ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था और इसके खिलाफ हम खड़े थे, अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने, और इसमें अच्छी कोई बुरी बात नहीं है।
1: दैट इज नन ऑफ हर बिजनेस। पहली बात तो मैं कहूंगी कि कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने, आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सेनन ने क्या पहना क्या नहीं पहना, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस।

0: आपकी साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से ये लड़कियां आती हैं, ये भी होनहार हैं, आप भी बड़ी अच्छी अदाकार, आप भी बड़ी होनहार अदाकारा हैं, आप जो अब कर रही हैं उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, किसी की वेशभूषा पर बोलना, ये दिखाता है कि आपकी कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता वाली सोच है आपकी। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आप ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था और इसके खिलाफ हम खड़े थे, अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने, और इसमें अच्छी कोई कोई बुरी बात नहीं है।
1: दैट इज नन ऑफ हर बिजनेस। पहली बात तो मैं कहूंगी कि कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने, आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सनोन ने क्या पहना क्या नहीं पहना, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: So, sir, what is your target as far as Diwali is concerned, or by the year end, where do you see the gold prices?
1: So I think with the given fundamental, I am more bullish on gold because of geopolitical tension. No doubt it has been slightly settling down, but central bank buying everything. I think Diwali is in November, and if we close this year, I am expecting 5,100 in international, whereas on domestic side with the rupee, no doubt some strength has been there in rupee, but some concerns still going on. We can see gold making a new high, maybe around 180, 185 should be the level by year end, or we can say by Diwali.
0: Okay, got that. And what about silver? What is your expectation by the year end on silver prices?
1: So silver is getting a two name. One is the devil's metal because of volatility what we have seen this year, from the high of 4,20,000 market crashed down to the level 2 lakh, and now it has sharply recovered and trading very well around 2,40,000, 2,45,000 nearby. So I think silver as an industrial metal, today morning itself, Chinese industrial demand data has came that is slowly and steadily picking up. The consumption from the industry side is quite high. Deficit, we have entered in seventh year. No new supply has been there. Looking to this, I am expecting silver to test around $90 by this year end, which means on domestic side, we can see a level like $3,25,000.
2: मनुस्मृति को लेकर के जो उनका जो है वो पंचिंग पैड बना रखा है, उसको मनुस्मृति को जो है वो सियासी लिंचिंग का जो है वो एक साधन बना लिया है, तो ये वो लोग हैं जो लोग कि जिनको कि मनुस्मृति के बारे में ज्ञान नहीं है, अज्ञानता से भरे हुए हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि कम्युनल भी तड़का लगेगा, कास्ट का भी तड़का लगाने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो है वो मिले मेरा तुम्हारा हो जाता है, मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की को तालिबानी ताले में जो है वो कैद करने की कोशिश करो, ये ठीक नहीं है। जहाँ तक सवाल है हिजाब का, सवाल हिजाब के बारे में बहुत स्पष्ट है कि भाई भारत जो है वो स्वतंत्र देश है, जिसको जो इच्छा हो वो कर पहने, लेकिन जो ड्रेस कोड होता है संस्थाओं के, उस ड्रेस कोड का सम्मान सबको करना होगा, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। इसलिए जो है इसने जो लोग जो है उसमें सांप्रदायिक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सोच में खोट नहीं है बल्कि सोच में साजिश है।

0: आपकी साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से ये लड़कियां आती हैं, ये भी होनहार हैं, आप भी बड़ी अच्छी अदाकार, आप भी बड़ी होनहार अदाकारा हैं, आप जो अब कर रही हैं उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, किसी की वेशभूषा पर बोलना, ये दिखाता है कि आपकी कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता वाली सोच है आपकी। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आप ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था और इसके खिलाफ हम खड़े थे, अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने और उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने, और इसमें अच्छी कोई कोई बुरी बात नहीं है।
1: दैट इज़ नन ऑफ हर बिजनेस। पहली बात तो मैं कहूंगी कि कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने, आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सनोन ने क्या पहना क्या नहीं पहना, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: आपकी साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से ये लड़कियां आती हैं, ये भी होनहार हैं, आप भी बड़ी अच्छी अदाकार, आप भी बड़ी होनहार अदाकारा हैं, आप जो अब कर रही हैं उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, किसी की वेशभूषा पर बोलना, ये दिखाता है कि आपकी कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता वाली सोच है आपकी। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आप ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था और इसके खिलाफ हम खड़े थे, अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने और उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने, और इसमें अच्छी कोई कोई बुरी बात नहीं है।
1: दैट इज नन ऑफ हर बिजनेस। पहली बात तो मैं कहूंगी कि कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने, आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सेनन ने क्या पहना क्या नहीं पहना, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Cola

0: भी थी। तो
1: हम्म,
0: उसके बाद नॉर्मली बात हुई थी, खाना पीना एटमॉस्फेयर के बारे में बात हुई थी। उसके बाद कल
1: वो
0: सुबह,
1: भी कैलाश, वो भी कैलाश मानसरोवर जा रहे थे और वो भी ग्रुप में थे।
0: हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे ही आए थे। उनके साथ उनके दो थे, प्लस ग्रुप में 26 to 30 मेंबर थे। नहीं,
1: और किसी से भी संपर्क हुआ है उनके पूरे ग्रुप में से, किसी से आपका संपर्क हुआ है?
0: कल सुबह में मेरी भाभी से बात हुई थी उनसे। जब नेपाल का इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसने बोला कि हम जा रहे हैं टिबेट की ओर, टिबेट का इमिग्रेशन होगा, लेकिन 7:30 PM मॉर्निंग में वहां पहुंच गए थे टिबेट के इमिग्रेशन पे।
1: वी आर नाउ स्पीकिंग एट 9 PM, सो 36 आवर्स नन ऑफ यू हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। द होप ऑफ कोर्स इज दैट वी आर नाउ स्पीकिंग एट 9 PM, सो 36 आवर्स नन ऑफ यू हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। द होप ऑफ कोर्स इज दैट देर इज अ लॉट ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन ऑल्सो गोइंग ऑन। आई वॉन्ट टू कन्विंस ऑल थ्री ऑफ यू, देर आर रेस्क्यू ऑपरेशन गोइंग ऑन एंड नंबर ऑफ पीपल आर बींग रेस्क्यूड। So I hope that all your family members are back with you sooner rather than later. I pray for them, for each and every one of you. I really hope that in the next 3 days, in the next 24 hours, we will know that we'll have good news. So I that's all we can hope for. I wish that they come back. Thank you very much. I know it's not easy to come at a time like this on the show, but I appreciate you joining us and telling us what's happening. Thank you all very much for joining me. Nepal is staring at a catastrophe of terrifying proportions. That's just the human angle that you're seeing. And the real magnitude of the disaster is only emerging now as relief workers reach the areas affected by the floods. Nearly 20 bridges were washed away by the raging waters yesterday. The sudden floods have wiped out homes and buildings in...
2: Over 280 Indians, most of them Kailash Mansarovar pilgrims, are missing. Their families back home are praying for a miracle. Among the impacted are more than 100 pilgrims from Tamil Nadu.
3: At 9:05, he sent a message that they have arrived at the immigration.
2: Including the members of Sadhguru's Isha Foundation. Of them, over 20 are reported to be safe. But for families of those still unaccounted for, the wait for information is agonizing.
4: தாசில்தார் வந்தாங்க, திருவாரூர் தாசில்தார் வந்து பார்த்துட்டு விசாரிச்சுட்டு அதான் அந்த லிஸ்ட் வந்திருக்கு, ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம், உள்ளபடியே சேஃபாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தைரியம் கொடுத்துருக்கு.
2: A family from Puducherry, mother Geeta, daughter Vaishnavi and relative Anand Sundri is also stranded in the disaster zone.
5: சேஃபாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து ஃபோன் வந்தது. ஸோ சேஃபாக இருக்காங்க, அது ஓகே, பட் அவங்க கூட இன்னும் டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ண முடியல. காண்டாக்ட் கிடச்சதுன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும். அது திருப்பி எப்படி அவங்க ரிட்டர்ன் கூட்டணும் என்னன்றது இதுக்கு மேலே தான் நாங்கள் பிளான்
2: பண்ணோம். Among those stranded in Nepal is a software engineer, Suhasini Reddy from Hyderabad, who is based in Australia. Suhasini was traveling as part of a Kailash Mansarovar pilgrimage group and her current whereabouts are unknown.
6: We are worried. Worried in the sense they vacated the hotel and from then we don't have any other communication.
2: Subhashree Chakrabarty, who left Kolkata on 21st of August for Mansarovar Yatra, remains missing.
7: China ka immigration process baki tha. अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है, ना उनसे कोई फोन पे बात हो पा रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है, तो कुछ नहीं हो पा रहा था, हमको कोई पता भी नहीं चल रहा है. हम लोग एम्बेसी के साथ भी कांटेक्ट किए, बट अभी तक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है.